0: श्रोतागण, यो सुन्नुहोस् अब उसो बिहान 10:30 बजेसम्म प्रसारण गरिने कार्यक्रम सम्बन्धित जानकारी। यस जानकारीको लगत्तेपछि यहाँहरूलाई आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमैले प्रथम संस्कृत अनि हिन्दी भाषामा समाचार। 7:05 बजेमा लिएर आउनेछौ पुराना सदाबहार गीतहरूको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडिज। 7:25 बजेमा श्रोताहरूलाई आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ नेपाली भाषामा समाचार। 7:35 बजेमा लिएर आउनेछौ सूचना अनि विविध कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। यसरी 8:15 बजेमा आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषामा समाचार। त्यसपछि 8:30 बजेमा आकाशवाणीको उत्तर पूर्वी सेवा सिलोङ केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ अंग्रेजी समाचार। बिहानीको 8:40 बजेमा लिएर आउनेछौ नेपाली गीतहरूको कार्यक्रम गीतिमाला भने 9 बजे सुनाउनेछौ यस केन्द्रबाट मुख्य समाचार। 9:02 बजेमा कार्यक्रम चित्रांजलि अन्तर्गत सुनाउनेछौ पुराना हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। बिहान ठिक दस बजे सुनाउनेछौ यस केन्द्रबाट मुख्य नेपाली समाचार भने 10:02 बजेमा श्रोताहरूलाई मनोरञ्जन गराउन भनी लिएर आउनेछौ कार्यक्रम ताजे तरानी अन्तर्गत नयाँ हिन्दी चलचित्रका गीतहरू भने 10:30 बजेमा लिएर आउनेछौ एफएम गोल्डका विभिन्न कार्यक्रम।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आर्थिक विषयिकया मन्त्रिपरिषद समित्या अस्मै विपणन सत्राय 14 ग्रैष्मिक सस्यानां एमएसपीति न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभा सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदम मूल्यम सुनिश्चितम भविष्यति इति।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मैट्रिक टन LMT।
1: अस्य सत्रस्य विपणन कालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्य प्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदञ्च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनांकपर्यन्तं UAE, नेदरलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः CB जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी UAE अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेष् विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेष् च विचार विनिमयं करिष्यतः। अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते। सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमन्त्री एस जयशंकरः भविष्यति। ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिणः सदस्यराष्ट्राणां प्रतिनिधिदलप्रमुखाश्च अस्यां सभायां भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय अन्वेषण विभागः NEET UG 2026 इति परीक्षायाः विषये अभिकथित अनियमिततायाः प्रश्नपत्रस्य अनियमिततया प्रकाशनेति विषये च 5 अभियुक्तान् गृहीतवान्। प्रकरणस्य 5 अभियुक्ताः जयपुरतः 3, एकैकौ गुरुग्राम नासिकतः, अन्ये अनेक च संकिताः सम्प्रति परीक्षमाणाः सन्ति। असम सर्वकारः अस्य मासस्य 26 दिनांके राज्य विधानसभा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect।
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ

0: दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेब को 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलो हर्ज में हामी आकाशवाणी गान्तोक को बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोली रहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंगा को 103 मेगा हर्ज अनि मोबाइल एप न्यूज अन एआईआर मा पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता स्टूडियो को घड़ी में समय बिहान को 7:05 भइसकेको छ र सधैंझै हामी उपस्थित भइसकेका छौं पुराना सदाबहार गीतहरूको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडिजमा। कार्यक्रम गोल्डन मेलोडिजको प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा सांगीतिक अभिवादन जनाउँदै पहिलो गीत सुनाउन लागिरहेका छौं। चलचित्र अनामिकाबाट गायक कलाकार लता मंगेशकरको आवाजमा सन् 1973 रघुनाथ झालानीद्वारा निर्देशित चलचित्रका निर्माता ताहिर हुसेन रहेका छन्। यस चलचित्रमा कलाकारहरू संजीव कुमार, जया बच्चन, नरेन्द्रनाथ, हेलेन राजेन्द्रनाथले मुख्य रूपमा अभिनय गरेका छन्। चलचित्रका गीतहरूमा संगीत माजरो सुल्तानपुरीको रहेको छ। त श्रोता स्वीकार्नुहोस् यस सुमधुर गीतलाई।
2: बाहों में चले

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोता, यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौं सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरू कार्यक्रम गोल्डन मेलोडिजमा। अब कार्यक्रममा अघिल्लो गीत सुनाउन लागिरहेका छौं चलचित्र अनहोनीबाट गायक कलाकार आशा भोसलेको आवाजमा। सन् 1973 सालमा बनिएको थियो चलचित्र अनहोनी, जसका निर्माता र निर्देशक दुवै रवि तेन्दुन रहेका छन्। कलाकारहरू संजीव कुमार, लीना चन्द्रभाकर, आशा रानी, बिन्दु मनमोहक अनि साथीहरूले यस चलचित्रमा मुख्य अभिनय गरेका छन्। यस चलचित्रमा संगीत भरेका छन् वर्मा मालिकले। त श्रोता, स्वीकार्नुहोस् यस सुमधुर गीत।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर

जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी

0: के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी गान्तोक प्रस्तुत गर्दछ एक वृत्तचित्र रूपक सिक्किम का सुनवारहरू।
4: श्रोता, विभिन्न जातिका आफ्नै भाषा परम्परा जीवन बचाएका कथाहरूसितै वेशभूषा रीतिथिति खानपान संस्कार संस्कृति हुँदछ। यस्तोमा योपल्ट हामी कुरा गर्नेछौ सिक्किममा बसोबासो गर्ने सुनवार अथवा सुनवार मुखियाहरू बारे।

0: श्रोताहरूले यतिन्जेल सुनिरहनु भएको थियो विविध जानकारी तथा मनोरञ्जनले भरिएको कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। हामी आकाशवाणीको गान्तोक बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूजन एआईआर
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
3: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की।

0: मंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

0: में आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रूपये बढ़ाकर 2,441 रूपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेको छौ। साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप अनि एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता कार्यक्रम गीतिमालालाई अघि बढाउँदै अब सुनाउन लागिरहेका छौ कलाकार फतेमान राज भण्डारीको आवाजमा यो गीत। यस गीतको शब्दहरूले मानिसको बाहिरी परिस्थिति र भित्री अवस्था दुवैको विनाशलाई अति नै मिठो ढंगले तुलना गरेका छन्। त श्रोता स्वीकार्नुहोस् यो गीत।

यो सुन्नुहोस् लाइभ फोन इन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सूचना। आगामी 15 मई 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 प्रसार गरिने ग्रामीण कार्यक्रममा हामी लिएर आउनेछौ लाइभ फोन इन कार्यक्रम। विषय रहनेछ किडनी रोगका कारणहरू। यसबारे जानकारी दिन भने हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ सोचेगाङ एससीएनएम अस्पतालका कन्सल्टेन्ट मेडिसिन एण्ड नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर जुदित

यो सुन्नुहोस् लाइफ फोन इन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सूचना। आगामी 15 मई 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 मा प्रसार गरिने ग्रामीण कार्यक्रममा हामी लिएर आउनेछौ लाइफ

0: जाए।
1: वोल्टास मैक्स क्लीन वॉशिंग मशीन, इसका डायना वॉल पल्सेटर जिद्दी मैल को भी बाहर निकाले और बच्चों को बच्चे ही रहने दे।
0: मैक्स क्लीन हर दाग चूमने जाए।

99.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू एक बार फिर से हाजिर है और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपके लिए जो कि हम लेकर आते हैं हर रोज 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स। इसमें आप भेजते हैं अपनी रिक्वेस्ट और हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। fmgoldairdelhi@gmail.com ये है एड्रेस अगर आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com और अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की उस गाने से जिसकी फरमाइश बहुत सारे लोगों ने भेजी, यानी जग्गर राम साहू, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या। इन सब ने सुनना चाहा है प्यार झुकता नहीं फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। बहुत ही प्यारा सा गाना है, आप भी सुनिए, आनंद उठाइए इस गाने का और फिर शायद आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाए, क्या पता, देखते हैं। फिलहाल तो इस गाने को सुनिए।

ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों से मिलकर बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, बल्कि कुछ जगहों को देख के आपको बहुत कुछ याद आ जाता है। जैसे कुछ गाने भी आप सुनते हैं तो आपको कुछ कुछ याद आ जाता है कि ये गाना अच्छा मैंने पहली बार शायद वहां सुना था, शायद ऐसा हुआ था, और उस गाने से जुड़ा पूरा एम्बियंस जो कि आपके दिलो दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था, लेकिन उस गाने को सुनकर आपको याद आ जाता है। तो ये गानों का मजा है, इस मजे को उठाते रहिए और ऐसा ही गाने सुनवा रहे हैं आप लोग आज हमें। तो एक गाना और है जिसकी फरमाइश आई है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव, इन सब ने सुनना चाहा है। फिल्म है कामचोर, गाना है ये वाला।

ये गाना त्रिशूल फिल्म का था और आप इस गाने को सुनना चाहा था महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल ने। इनके अलावा ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा भी यही गाना सुनना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं आप सब ने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा। और अब जिस गाने की बारी है, ये थोड़ा सा सैड सॉन्ग है लेकिन इस गाने को भी कई लोगों ने सुनना चाहा है। दिग्दर्शन कविता गौर और इनके अलावा मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और बलवीर और ऋतिक, ये सब सुनना चाहते हैं मेरे अपने फिल्म का ये गीत।

हर कोई ऐसे ही चाहता है ना कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जिसे वो अपना कह सके। हालांकि अपने आसपास बहुत लोग होते हैं, बस कई बार हमारी नजर नहीं पड़ती, कई बार अपने अपने जैसे नहीं लगते, बस इतना सही फर्क है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप खुद अपना बनने की कोशिश करें, तो शायद दूसरे भी आपके अपने बन जाएंगे। ऐसे ही चलती है ना दुनिया, वो गाना है ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही आप अपने बनने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत सारे अपने आप को मिल जाएंगे। इसी के साथ अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया की फरमाइश पर, कुदरत फिल्म से।

इस एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग के बाद बढ़ते हैं अपने आखिरी गाने की तरफ, जो कि सतीश अनेजा और बिमल अनेजा की फरमाइश पर है। ये भी एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग है और राजेश खन्ना के सुपरहिट गानों में इसे शामिल किया जाता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आपको सुनवाते हैं दो रास्ते फिल्म का ये गाना। नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।

0: इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण से मिली है। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वेरा, रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची सहित कई देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीकी कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चौथे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ 29 से 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी को लेकर वे काफी उत्सुक हैं। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्यवर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 75,059 पर और निफ्टी 169 अंक के वृद्धि के साथ 23,582 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The two-day meeting of BRICS foreign ministers being hosted by India is underway in New Delhi. The meeting is being chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries are participating in the meeting. Making the initial remarks, Dr. Jayashankar said that the meeting is happening at a time

का आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है लेकर तस्वीर। और तस्वीर में उस जगह की बात होगी जिसे आमतौर पर हम रेत के टीलों और गर्म मौसम के लिए जानते हैं, यानी कि राजस्थान। लेकिन इसी राज्य में एक ऐसी जगह है जो कि साल भर ना जहां का मौसम सुहाना रहता है और एक सुखद आश्चर्य है एक तरह से। ये है यहां का राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू। इसीलिए गर्मियों में ये सभी पर्यटकों की पहली पसंद बना रहता है। ऐतिहासिक मंदिर, हरियाली से घिरी घाटियां और शांत झीलें इस जगह को बनाते हैं खास। तो इसी की बातें करेंगे आज, लेकिन गानों के साथ।

किसी ना किसी चीज से तो आपको दिल लगाना ही पड़ता है और अक्सर होता यही है, हर इंसान की कुछ ना कुछ पसंदीदा चीजें जरूर होती हैं। किसी को पेंटिंग करने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, और जिनको घूमने का शौक होता है उन्हीं के लिए है हमारा ये प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम बातें करते हैं अपने ही देश की बेहतरीन, खूबसूरत और न जाने कैसी कैसी जगहों की, ऐसी जगह जो वाकई दिल को लुभा ले एक ही नजर में। अब हम आज हम बातें कर रहे हैं माउंट आबू की, जहां सबसे ज्यादा मशहूर है नक्की झील। यहां मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। आप यहां बोटिंग का आनंद ले सकते हैं या शाम के समय सनसेट का आनंद ले सकते हैं। झील के आसपास छोटे छोटे कैफेज हैं, स्थानीय बाजार हैं जहां से आप राजस्थानी हस्तशिल्प खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर मिल जाती हैं। लेकिन आपको अगर असली कारीगरी देखनी है तो फिर जाइएगा दिलवाड़ा मंदिर। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने ये जैन मंदिर इतने भव्य हैं कि आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं, आह और वाह दोनों निकलती हैं एक साथ। एक एक कोने पर बारीक नक्काशी की गई है, चाहे छत हो या खंभे या दीवार, हर एक कोना ना कला का अद्भुत नमूना है। इसीलिए तो दुनिया इन्हें चाहती है और इन्हें देखने के लिए आती है।

माउंट आबू की बातें हो रही हैं और अगर आप माउंट आबू के नेचुरल परिदृश्य को देखना चाहते हैं यानी कुदरती नजारों को देखना चाहते हैं तो फिर गुरु शिखर एक बेहतरीन जगह है। ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जहां से आसपास के पहाड़ों और पूरे माउंट आबू का दृश्य आपको दिखाई देता है। गुरु शिखर पर माउंट आबू वैधशाला और गुरु दत्तात्रेय का गुफा मंदिर है। गुरु शिखर की यात्रा करने के लिए आपको 15 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद चोटी तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी होंगी और सीढ़ियां अगर आप चढ़ ही सकते हैं तो फिर तो आप आधार देवी मंदिर भी जा सकते हैं क्योंकि वहां पर है मां दुर्गा का मंदिर, ये भी गुफा मंदिर है। लेकिन यहां तक जाने के लिए आपको 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और अंदर के मंदिर में जाने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा रेंगना पड़ेगा, लेकिन यहां की पहाड़ी से ना इस पूरे हिल स्टेशन का बर्ड आई व्यू दिखता है।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभ

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है तस्वीर। मैं हूं नीतू आपके साथ और आज हम बातें कर रहे हैं माउंट आबू की, जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और माउंट आबू जाएं

तो वहां का सनसेट पॉइंट जरूर देखिए, वहां से ना डूबता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पहाड़ों के पीछे छुपता हुआ लाल लाल सूरज एकदम अलग ही आभा देता है। और यहाँ का हनीमून पॉइंट भी काफी मशहूर है, जहां से आप घाटियों का एक विशाल विस्तृत दृश्य देख सकते हैं। वन्य जीवों से आपको प्यार है तो फिर जाइए माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पर जानवरों और पंछियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ट्रेकिंग और नेचर वॉक के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। वैसे भी जब आप नेचुरल जगहों पर जाते हैं ना, तो वहां चलना अपने आप में ही खूबसूरत लगता है।

ये जो फिसलन की बात हुई है ना, ये माउंट आबू में आपको मिल सकती है अगर आप बरसात के मौसम में जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि बरसात का मौसम अवॉइड कीजिए। माउंट आबू के आसपास अगर आप देखना चाहते हैं तो माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में है अचलगढ़ किला। किला जो है वो मूल रूप से परमार वंश के शासकों ने बनवाया था, बाद में महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया और इसे अचलगढ़ नाम दिया। किले का पहला द्वार है हनुमान पोल जो निचले किले का प्रवेश द्वार है। थोड़ी चढ़ाई के बाद किले का दूसरा द्वार आता है चंपा पोल और आंतरिक किले के प्रवेश द्वार, ये जो है ये आंतरिक किले का प्रवेश द्वार है और इस किले के अंदर और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं जिन्हें देखकर आपको अच्छा लगेगा, आप शायद उस दौर में पहुंच जाएं।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की

0: ही गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
1: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार, यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं,
1: जी,
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
1: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
1: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
1: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
1: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक

0: बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
2: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
3: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
4: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
5: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
6: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी

0: नद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश, पथ शून्य तरु शून्य, प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
3: हाँ
2: दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
1: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
0: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, यानी इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर, रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के

0: सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था, तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर हो, वो देखो उस गड्ढे के पास।
1: जी
3: अच्छा,
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
4: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: fuori.
1: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
2: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
2: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
2: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
1: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोता, यतिन्जेल प्रस्तुत थियो एनसीईआरटी माथि तयार पारिएको एक प्रायोजित कार्यक्रम। अब लिएर जाँदैछौ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ विविध भारतीय सेवाहरू।
4: आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोदड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सबकी शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है यह सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफर चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगी, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, यह कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर यह डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखती हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज्यादा से ज्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, जरूर भेजिएगा। और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्नाडे की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मुगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं, ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं क्या, आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है, प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे क्या था, सही डायलॉग आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा एट ईयर्स मुगैम्बो खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, मेरा नाम सुरमा भूपाली ऐसे ही नहीं है, अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे, ठाकुर साहब गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली, ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंती इनके सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहां पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा, ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने जमाने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मजा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है, डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और इसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है, बिल्कुल सही। चलिए ये सारे डायलॉग तो

0: है,
1: आंखों में अदाएं भी हैं। और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है, जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह जिंदगी पड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी जरूर बताइएगा। मैंने अभी दो दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: बसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी, उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली। मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: summit with Chinese president. The U.S. president has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the president are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7 seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last 8. Meanwhile, top seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last 8. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision, SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
3: In strengthening cooperation against terrorism.
1: Dr. Jayshankar.

0: ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब।

0: पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को यह मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन

0: अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में यह 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता हामीले उपस्थित भएका छौं विभिन्न कलाकारहरूको स्वरमा विभिन्न नेपाली देशभक्ति गीतहरू। त आउनुहोस् श्रोता सर्वप्रथम सुन्नुहोस् कलाकार मणिकमल छेत्री अनि साथीहरूको स्वरमा यस गीतलाई।

0: सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोशल मीडिया ह्याण्डल एक्समा @AIR News Karsiang अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: अब रहल समाचार। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरल को नया मुख्यमंत्री हुनेछन्। कांग्रेसले आज नयाँ दिल्लीमा एक संवाददाता सम्मेलनको अवधि उहाँको नामको घोषणा गरेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अनि चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले आज चीनको राजधानी बेजिङमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुभयो।
4: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनपिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनपिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय जनता पार्टीले लोकसभामा विपक्षका नेता राहुल गान्धीको विदेश यात्रालाई लिएर प्रश्न उठाएको छ। नयाँ दिल्लीमा आज संवाददाताहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै भाजपा प्रवक्ता सम्बित पात्राले भन्नुभयो, श्री गान्धी पछिल्लो 22 वर्षको सार्वजनिक जीवनमा हुनुहुन्छ अनि यस अवधि उहाँले 54 यात्रा गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को तेस्रो चरणको घोषणा गरेको छ। यसमा 16 राज्य अनि 3 केन्द्रशासित प्रदेशमा चरणबद्ध ढंगमा चलाइनेछ। यी राज्यहरू आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना र उत्तराखण्ड रहेका छन्। केन्द्रशासित प्रदेशमा दिल्ली, चण्डीगढ, दादरा अनि नगर हवेली तथा दमन अनि द्वीप सामेल छन्। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठीले विशाखापट्टनममा पूर्वी नौसेना कमाण्डको भ्रमण गर्नुभयो। उहाँले नौसेनाको संचालन, प्रशिक्षण र प्रशासनिक गतिविधिहरूको समीक्षा गर्नुभयो। नौसेना प्रमुखले बंगालको खाड़ीमा पूर्वी फ्लीटको तयारीको पनि जायजा लिनुभयो। उहाँले युद्धपोत, पनडुब्बी र समुद्री विमानहरूको साथ गरिएको उन्नत युद्ध अभ्यासहरूको अवलोकन गर्नुभयो। प्रवर्तन निदेशालयले विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम फेमाको प्रावधानहरू अन्तर्गत जायग्रेड टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड अनि अन्यसित सम्बन्धित जाँचको मामलामा 14 व्यक्तिहरू अनि कम्पनीहरूको परिसरमा छापेमारी गरेको छ। एक बयानमा निदेशालयले भनेको छ कि जायग्रेड टेक्नोलोजीज कम्पनीले अनलाइन गेमिङ गतिविधिहरूको लागि भुक्तान एग्रिगेटरहरूको माध्यमद्वारा मानिसहरूबाट पैसा संग्रह गरिरहेको थियो। निदेशालयले बताए अनुसार संग्रह गरिएको पैसा कथित रूपमा ह्याप्पी, इजी गो सहित विभिन्न कम्पनीहरूको माध्यमद्वारा अनि पछि वालेट रिचार्ज तथा एयरलाइन सम्बन्धी लेनदेनद्वारा विदेशहरूमा पुर्याउने गरिन्थ्यो, जो फेमा अधिनियमको प्रावधानहरूको उल्लंघन हो। रक्षा राज्य मन्त्री संजय सेठले अपरेशन सिन्दूर भारतको ऐतिहासिक सफलताको उत्कृष्ट उदाहरण रहेको बताउनु भएको छ, जसमा त्वरित अनि समन्वित कार्यवाही तथा स्वदेशी हतियारहरू अनि प्रणालीहरूको उपयोग गरियो। नयाँ दिल्लीमा कलम और कवचको तेस्रो संस्करणको उद्घाटन सत्रमा श्री सेठले भन्नुभयो, आधुनिक भारत नयाँ चुनौतीहरूको समयमा वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूलाई सैन्य शक्तिसित जोड़िरहेको छ। सरकारले उखु, सेतो चीनी र प्रशोधित चीनीको निर्यातमा सेप्टेम्बर 2026 वा अर्को आदेशसम्म तत्काल प्रभावसहित प्रतिबन्ध लगाएको छ। वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले जारी गरेको आदिसूचीमा निर्यात नीतिमा प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ। अमेरिकाको सीएक्सएल र टीआरक्यू कोटा अग्रिम प्राधिकरण योजना र अन्य देशहरूको खाद्य सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्न यूरोपीय संघ र अमेरिकामा निर्यात गरिने चीनीमा यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन। भारतीय सेना अनि नौसेनाले आज अन्तर सेवा सहयोगलाई बलियो बनाउने अनि अधिक संयुक्त तालाई बढ़ावा

0: हरियाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: डॉ जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति तथा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष की बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारत आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है।

कांग्रेस ने वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। इसके साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूडीएफ ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। निर्वाचन आयोग ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जिंदगी उस बेहतरीन किताब की तरह है जिसमें कई खूबसूरत पन्ने हैं और उस किताब को पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, कहीं खुशी होती है और कहीं तकलीफों से भरा सफर और कहीं कुछ इतना अच्छा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी को खुश होकर बिताना चाहिए, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले। और हम सबको पता है कि हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 स्वर्णिम वर्ष, आकाशवाणी के संग यादों के रंग। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका एक अनोखा रिश्ता रहा है रेडियो से। करीब 40-45 साल का जो वक्त है मैम ने रेडियो को दिया, और मैं आपका तारुफ करवा दूं कि मैम हमारे साथ हैं ललिता चतुर्वेदी मैम हैं, जो कि पूर्व सहायक निदेशक आकाशवाणी रही हैं, बहुत अच्छी लेखिका और वक्ता। मैम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आकाशवाणी में।
1: धन्यवाद नसरीन
0: जी। मैम तो हम ये जानना चाहेंगे कि इतना लंबा जो वक्त आपने रेडियो के साथ गुजारा है वो कैसा रहा और इसकी शुरुआत कैसे हुई?
1: सबसे पहले तो मैं सभी एफएम गोल्ड के श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ
0: जी,
1: और एक शेर सुनाना चाहती हूँ। फिर नजर में फूल महके
0: जी,
1: दिल में फिर शम्मय जली, फिर तसव्वुर ने लिया इस बज्म में आने का नाम।
0: बहुत खूब।
1: और इस बज्म में आके किसको बुरा लगता है,
0: जहां
1: आपके जीवन के, आप तो 45 साल कह रही हैं, मैं 50 साल का अपना अनुभव बताना चाहती हूं, क्योंकि मेरा पहला ब्रॉडकास्ट 2026 आज चल रहा है, 1976 में हुआ था।
0: बहुत खूब।
1: जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, स्टूडेंट थी, और शुरुआत में वार्ता के माध्यम से मैंने रेडियो से शुरुआत की
0: जी।
1: हालांकि रेडियो की शुरुआत तो बहुत बचपन में ही हो गई थी। मेरे फादर बहुत रेडियो सुना कर

0: होते थे
1: जी जी।
0: और उनको क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था। तो सुबह जो समाचार आते थे 8 से 8:15, उसके बाद 8:15 से 9 बजे तक शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता, तो वो नियमित सुना करते थे। संडे के दिन वो कार्यक्रम नहीं आता था, रविवार को उसकी जगह बच्चों का कार्यक्रम आता था 8:15 से 9 बजे तक, जयपुर से जो रिले होता था मुकुल कार्यक्रम। तो वो हमें कहते थे इसको सुनो, और हम सुनते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था, एक अनोखी सी दुनिया लगती थी वो।
1: तो कहते हैं कि वो रेडियो बचपन से ही रग रग में पहले से ही कायम था, उसके लिए ज्यादा हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी।
0: बिल्कुल,
1: और वो शौक है और वो हमें फिर यहां तक ले आया, ये चीज है।
0: हाँ, रेडियो मुझे खींच के लाया। मैं रेडियो तक नहीं खींची थी, कहूं तो गलत नहीं होगा
1: जी,
0: रेडियो ही मुझे खींच के ले आया।
1: बहुत खूब मैम, बहुत सारी बातें करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कि बहुत सा प्यारा सा गीत है किनारा फिल्म से, इसको सुन लेते हैं, फिर बहुत सारी बातें होंगी।

0: जी बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है कि आकाशवाणी में या रेडियो से जुड़ी किसी भी चीज में सिर्फ और सिर्फ आवाज का ही कमाल होता है। और यकीनन बिना देखे ये कैसे हो पाता था मैम कि बिना देखे रेडियो के पीछे कौन है, आवाज के जरिए कभी मिल जाए तो पहचान लेते थे लोग?
1: बहुत बहुत ऐसा कई मर्तबा हुआ
0: जी जी,
1: क्योंकि आप अनाउंसर हो और आप कार्यक्रम कर रहे हो तो नाम तो उस जमाने में हम बोला नहीं करते थे
0: जी, जी।
1: पर कहीं आवाज का लहजा, उसका ठहराव, कहीं भी जाते थे तो कोई ना कोई पकड़ ही लेता था
0: कि ये रेडियो के पीछे जो आवाज है ये यहाँ पर सामने।
1: बिल्कुल
0: जी, तो ऐसी और कौन सी यादें हैं जो लगता है कि हमें मतलब वो पीछे वाले एरा में खींच के लेकर जाती हैं? और वो बहुत खूबसूरत सा दौर था जब हमें लगा कि भाई ये रेडियो है, कमाल की चीज है। और कितना प्यार करते थे लोग जब मिलते थे तो?
1: असल में देखो, मैंने तो विज्ञान की पढ़ाई की
0: जी,
1: एमएससी किया मैंने जूलॉजी में। मेरी बड़ी सिस्टर इंग्लिश के लेक्चरर थी तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं भी लेक्चरर बन जाऊं।
0: अच्छा।
1: और उस दौर में संजोग ऐसा बैठा कि मैं डिबेटर बहुत अच्छी थी
0: जी,
1: और अपने शहर में मेरा बहुत नाम था
0: जी जी।
1: शहर के तमाम कॉलेज में कहीं भी डिबेट का कोई कॉम्पिटिशन हो तो मैं फर्स्ट प्राइज और ट्रॉफी भी लाती थी
0: जी।
1: तो रेडियो के लोग कवरेज के लिए आते थे तो उन्होंने देखा बार बार यही लड़की हरे नाम ले जा रही है
0: जी,
1: तो जो कवरेज करने आते थे उन्होंने प्रोड्यूसर को बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की बहुत बोलती है, अच्छा बोलती है
0: जी जी,
1: और उसका उच्चारण बहुत शुद्ध है, क्योंकि रेडियो में बुलाकर अगर किसी को कुछ काम देते थे तो उच्चारण भी उसका
0: बहुत इम्पोर्टेंट चीज
1: सुधारा जाता था
0: जी जी।
1: तो प्रोड्यूसर बोले अच्छा उसको लेके आओ। तो संजोग से मेरे ही कॉलेज में था एक फंक्शन और उसका मैं संचालन कर रही थी
0: जी।
1: तो बहुत छोटा शहर है और बहुत पारंपरिक लोग रहते थे वहां पे, रेडियो का इतना ग्लैमर नहीं था
0: जी जी।
1: कि लोग रेडियो में जाएं या दूरदर्शन में जाएं
0: जी।
1: तो वो जो थे कवरेज करने वाले अनाउंसर थे उन्होंने मेरी कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा इस लड़की को हम अपने रेडियो में ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाएं? उन्होंने कहा कि भाई इसके पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा। बोले हम इससे बात करें? बोले कर लीजिए। उन्होंने पूछा कहाँ रहती हो, किस जगह रहती हो? तो मैं जहां रहती थी वहां एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम से हमारी लेन का नाम था
0: जी।
1: उसमें दो तीन ही बड़े बड़े मकान थे, उसमें एक मेरा भी था
0: जी।
1: एक मंदिर था, एक उसके बाद उनका था। मैंने बताया कि मैं वहां रहती हूं उनके गली में। तो बोले कि वहां तो मेरे एक मित्र भी रहते हैं। तो वो संजोग से उन्होंने जो नाम लिया वो मेरे पापा का निकला। मैंने कहा हाँ वो तो मेरे ही पिताजी हैं। तो बोले कि अच्छा तुम उनकी बेटी हो तो फिर तुम रेडियो आओ, मैं तुम्हारे पापा से शाम को बात कर लूंगा
0: जी। ये हम कौन से शहर की बात करें?
1: ये बीकानेर।
0: बीकानेर
1: एकदम पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, राजस्थान का खूबसूरत सा
0: बहुत शहर
1: जी। तो जी उन्होंने बात किया और कि भाई उसको भेज दो रेडियो। और अगले दिन मैं रेडियो गई, वहां प्रोड्यूसर मिले, बोले हाँ हाँ तुम तो बहुत डिबेट करती हो, एक वार्ता लिखनी है तुमको
0: जी।
1: हमने कहा अच्छा। उन्होंने पहली वार्ता दी और वो मैंने थोड़ी सी अपने से लिखी, थोड़ी पापा से मदद ली, थोड़ी बड़ी दीदी से मदद ली और वो जब ब्रॉडकास्ट हुई उनको बहुत पसंद आया मेरा बोलना। और वहां पर वो एडिट भी करते थे साथ में, मैन्युअली रिकॉर्डिंग होती थी उसको मैन्युअली करते थे। अब तो बहुत आसान हो गया है कंप्यूटर पे एडिटिंग करना
0: जी जी।
1: तो मैंने उनको देखा वो एडिट कर रहे हैं, फटाफट आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं।

0: रहे हैं, उंगलियां हिल रही हैं, मेरे को ये बड़ी रोमांचक बात लगी जी। मैंने कहा आप ये कैसे कर लेते हैं? बोले ऐसे ही कर लेते हैं, सीख गए। तो जब जब मैं रेडियो जाती थी मैं एडिटिंग जरूर देखती थी उन लोगों का, और सच बताऊं रेडियो में बोलने से ज्यादा मुझे प्रोडक्शन अच्छा लगने लगा, उसमें मैं माहिर भी हो गई
1: जी जी।
0: और उसी के कारण से मुझे आकाशवाणी में 5 बार एनुअल अवार्ड मिला,
1: माशाल्लाह बहुत खूब।
0: 5 अलग अलग विषयों पर मैंने फीचर बनाए
1: जी,
0: तो वो मेरी स्ट्रेंथ थी। बाद में मैं अनाउंसर हो गई 82 में, और वो भी राजस्थान में ही, बीकानेर से 132 किलोमीटर दूर सूरतगढ़ स्टेशन है
1: जी,
0: जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही सटा हुआ है। वहां मैं 82 से 88 तक अनाउंसर रही
1: जी।
0: तो वहां छोटा स्टेशन था, हर तरीके का काम करने का मुझे मौका मिला। वहां पे अगर कहानीकार नहीं आया तो आपको प्रोड्यूसर ने कहा कि एक कहानी भी लिखनी है क्योंकि डेविएशन नहीं हो सकता। युववाणी हो रही है, कवि गोष्ठी में एक कवि नहीं आया तो आपको कविता भी लिखकर सुनानी है
1: जी, जी, जी।
0: और कभी कभी नाटक भी तैयार करते थे और रूपक भी तैयार करते थे। तो अनाउंसर रहते रहते मैंने बहुत काम किया वहां पे।
1: मतलब इतनी सारी खूबियां ऑलरेडी मौजूद हैं कि किसी भी वक्त कोई भी काम दिया जाए तो हम कर सकते हैं।
0: दिया जाता था
1: जी,
0: दिया
1: जी।
0: जाता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हमारे तानपुरा प्लेयर नहीं आए, और मैं शौकिया तानपुरा हिलाती थी म्यूजिक स्टूडियो में जाके, तो जो बांसुरी वादक थे वो मेरे ही स्टाफ के थे
1: जी,
0: वर्मा जी, विजय वर्मा जी, उनका उस दिन बांसुरी वादन होना था और तानपुरा प्लेयर आए नहीं है, तो उन्होंने कसकर मुझे बताया पहली उंगली से ये और फिर दूसरी उंगली से ही 3 तार छेड़ना है। मैं बड़ी शौक से कर रही हूँ, और मैंने उनका वो लाइव आधे घंटे तानपुरा बजाया जो कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं अनाउंसर थी।
1: जी
0: उसके बाद तो मैं रेगुलर पकड़ी गई, जब कोई नहीं आता था मुझसे तानपुरा भजवाते थे।
1: मतलब ये खूबी भी पता लगी कि आप ये भी कर सकती हैं, और अगर
0: तो शौकिया छोटी स्टेशन पे आपके पास कुछ करने को नहीं, तो
1: नहीं
0: बहुत कुछ करते
1: जी,
0: थे
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: बहुत खूब मैम, बहुत प्यारी प्यारी बातें आपके साथ हो रही हैं, और यकीनन ये जो जर्नी है इसमें इतना लंबा वक्त जो गुजारते हैं हम रेडियो के साथ में, वाकई में ये काबिले तारीफ है कि इतना काम जो आपने पीछे किया। हम और बातें करेंगे लेकिन एक बहुत प्यारा सा ये गीत है, आंधी फिल्म का ये गीत है, चलिए उसको सुन लेते हैं फिर।

0: एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे तमाम सुनने वाले। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त बेहद अच्छी पर्सनालिटी मौजूद हैं। ललिता चतुर्वेदी मैम हमारे साथ हैं, पूर्व सहायक निदेशक आकाशवाणी की। और मैंने तो आपको बहुत कम इंट्रो बताया कि मैम लेखिका भी हैं, बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, और मैम ने खुद बताया कि रेडियो के पीछे और उन्होंने कितने कितने काम किए हैं और कितने टैलेंटेड हैं मैम, ये हमें अभी पता चला। तो मैम ये बताइए कि सूरजगढ़ में जब ये आपका प्रोग्राम चलता था, ब्रॉडकास्टिंग होती थी, उसके आगे का सफर फिर कैसा रहा?
1: सूरतगढ़ में तो तमाम तरीके के कार्यक्रम करे, मतलब एक तरीके से हमें ट्रेनिंग मिली हर तरीके के कार्यक्रमों की।
0: जी जी।
1: और एक दिलचस्प वाकया बताऊं मैं आपको कि सुबह की ड्यूटी मुझे अक्सर सर्दियों में मिल जाती थी। ड्यूटी चार्ट बनाने वाले सीनियर अनाउंसर होते थे
0: जी जी।
1: और मैं सबसे यंगेस्ट थी, तो सारी सर्दी मुझे सुबह मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट करनी होती थी। और सुबह के समय ही 8:30 से 9 बजे तक पंजाबी गीतों का एक कार्यक्रम होता था, क्योंकि वहां पर 60-40 का रेशियो है। 60% अगर राजस्थानी भाषी हैं तो 40% पंजाबी भाषी लोग भी थे, तो उनका भी ध्यान रख करके हमें पंजाबी कार्यक्रम कुछ प्रसारित करने होते थे। तो एक पंजाबी गीतों का कार्यक्रम होता था 8:30 से 9 बजे तक
0: सुबह में।
1: और सुबह क्योंकि रोज मैं कर रही हूं तो मैं ही उसको ब्रॉडकास्ट करती थी।
0: बिल्कुल।
1: और उस जमाने में क्या गायिकाएं होती थी, प्रकाश कौर हैं, सुरिंदर कौर हैं, आशा सिंह मस्ताना हैं, और टेप से हमें वो गाने निकाल कर बजाने होते थे, क्योंकि पंजाबी फिल्में भी उतनी नहीं थी और लोगों की फरमाइश भी होती थी कौन कौन से गाने सुनाने हैं।
0: हमें सुनाने जी।
1: तो वो नियमित कार्यक्रम मैं करती थी। धीरे धीरे मुझे पंजाबी भाषा में भी रुचि होने लगी, मैं वो भी समझ गई किस तरीके से करना है। तो एक बार क्या हुआ कि सूरतगढ़ से पाकिस्तान बॉर्डर पे लोग गए हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, देखने की हमारी जो रेंज है वो कितनी है, क्योंकि 300 किलोवाट का हमारा ट्रांसमीटर था, बहुत पावरफुल था। तो वहां सुनने के लिए गए कि भाई वहां सुनाई देता है कि नहीं, तो हमें भी कुछ लोगों को ले गए कि वहां इंटरव्यू कर लेंगे।

0: आसपास के गांव में ग्रामीण जनों से खेती बाड़ी का भी कार्यक्रम होता है तो उन किस तरीके से खेती करते हैं। मैं सबसे छोटी और थोड़ी सी मेरे में उत्सुकता थी कि मैं पाकिस्तान का बॉर्डर देखूं, तो आज की तरह उसमें कोई बाड़ नहीं लगी थी, सिर्फ चौकोर एक सफेद एक पिरामिड सा बना रहता था। उसी सफेद पिरामिड के इस पार लिखा हुआ है भारत और इंडिया और उस पार पाकिस्तान हिंदी और अंग्रेजी में।
1: जी, जी।
0: तो हम देखते देखते वहां एकदम बॉर्डर तक चले गए और चेक पोस्ट वाले लोग साथ में थे।
1: जी।
0: सामने से पाकिस्तानी चेक पोस्ट वाले भी उतर के आ गए, क्योंकि जैसे ही बॉर्डर पे आपको हलचल होती है वो लोग भी आएंगे
1: आ जाते
0: तो तुरंत आए कि भाई कौन है, क्या है, ये लोग कैसे आए, तो मालूम पड़ा कि रेडियो के लोग हैं। तो जैसे ही मैं बोलने को हुई, उसमें से एक ने बोला कि आप पंजाबी गाने नहीं बजाते हो? मैंने कहा हाँ बजाती तो हूँ। बोले बीवी मैं तो आपको रोज सुनता हूँ।
1: बहुत
0: खूब। और मैं इतनी चकित और थोड़ी अच्छा भी लग रहा है। मैंने कहा अच्छा आप सुनते हैं? बोले कल आपने वो गीत सुनाया था, फलाने दिन वो सुनाया था, वो गाना बहुत दिन से नहीं सुनाया, आप सुनाइएगा। क्या था वो, लट्ठे दी चादर, ऐसे करके गाना था, वो आपने बहुत नहीं सुनाया, वो भी सुनाइएगा। मैंने कहा अच्छा आपकी बार जाऊंगी सुनाऊंगी। अब वो लोग भी बड़े वो हो रहे कि कोई आया है,
1: कोई आया है रेडियो से, कोई
0: और
1: आया है,
0: कुछ कर नहीं सकते वहां पे वेलकम या बातचीत। तो थोड़ी दूर पर चने के खेत थे, वहां से खूब सारे चने उगे हुए थे, हरे चने जिसे छोलिया कहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो उखाड़ करके जितना उनके अंक में भरा गया लेकर आ गए। बोले हम चाय पानी तो नहीं पिला सकते आपको, ये चने खाइए।
1: एक स्वीट जेस्चर उन्होंने
0: स्वीट जेस्चर दिया। तो मैंने उसमें से एक दो चने के दाने तोड़कर खाया और जैसे हमारे हिंदुस्तान का होता है, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिंदुस्तानी चना होता है। सारे लोग ठठाकर हंस पड़े। फिर मेरे सीनियर बोले कि सीमाओं में खेती को थोड़ी बांध सकते हैं, है ना, ये तो एक ही जमीन है इधर की उधर की। अब हम वो चना लेके आने को तैयार नहीं, और मैं अकेली रहती थी, मुझे क्या करना है। मेरे एक इंजीनियर आंख से इशारा कर रहे हैं, ले लेता हूँ इसको घर में बनाएंगे। मैंने कहा ले लीजिए, मुझे क्या है। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले कि हमारे वहां से लेके बहावलपुर तक आपके गाने बजते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रेडियो में पंजाबी गाने नहीं बजते थे। तो हमारे रेडियो को वहां सुना जाता था। जब ये जाना तो जो हमारे इंजीनियर सर्वे करने गए थे वो तो गदगद हो गए। उनको लगा कि वाह क्या हमारा रेडियो
1: वहां तक
0: पहुंचा है।
1: और ज्यादातर तो, ये लगता है मैम, जो फौजी भाई हैं यकीनन उन मतलब वो रेडियो बहुत शौक से सुनते हैं,
0: और कुछ साधन नहीं है,
1: साधन
0: उनके पास
1: नहीं है। और मुझे याद है कि एक पहले कार्यक्रम आता था फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम, उसमें उनके पसंद के गीत बजाए जाते थे और वो उसी से बड़े खुश हो जाते थे।
0: और उसके बाद मैं बताऊं आपको कि कुछ पाकिस्तान से फरमाइशें आने लगी, पोस्ट कार्ड आते थे बहुत उस जमाने में, तो हम उनके नाम भी ले लिया करते थे कि पाकिस्तान से इस गीत की फरमाइश आई है।
1: जी जी।
0: तो ये बहुत ही मतलब रोमांचक
1: अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ी बात है अपना नाम सुनकर रेडियो पे, अच्छा लोगों के दिलों में जो सुनने वाले हैं हमारे, इतनी खुशी होती है ना कि उसको बयां करना वाकई में मतलब मुश्किल है उनके लिए। बहुत क्योंकि रेडियो से प्यार करते हैं, रेडियो के पीछे जो आवाजें हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं और बड़ी खूबसूरती से।
0: आजकल तो हर कार्यक्रम में नाम बोला जाता है।
1: जी जी।
0: हमें आदेश नहीं था उस जमाने में, पर हमारी आवाज सच में ऐसी होती थी कि जिसको लोग
1: पहचान लेते थे,
0: पहचान।
1: अच्छा यही तो प्यार है, यही तो मोहब्बत है। जैसा कि उन्होंने एक वो दिखाया कि आपको वो प्यार कैसे शो ऑफ करें अपना, तो उन्होंने वो चने दे दिए, तो इससे खूबसूरत बात कुछ हो नहीं सकती है।
0: जी
1: तो मैम ये बहुत अच्छी चीज है हमारी जिंदगी में, रेडियो के माध्यम से हम न जाने कितने लोगों से जुड़ते हैं और बहुत लोगों के बीच में इस चीज का क्रेज है, शौक शुरू होता है। एक बहुत प्यारा सा गीत है, इसको सुन लेते हैं लता जी की आवाज में, फिर आगे बहुत सारी बातें करेंगे।

0: क्या हमेशा। तो बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैम से पूछते हैं कि दिल्ली कैसे आना हुआ।
1: जब मैं अनाउंसर थी उन्हीं दिनों मेरी शादी भी हुई
0: जी,
1: और 88 में मुझे दिल्ली आना था क्योंकि मेरे हस्बैंड यहीं थे
0: जी।
1: तो अब दो रास्ते थे, या तो मैं दिल्ली में एज ए अनाउंसर ही आऊं, उसमें मुझे थोड़ी ये लग रहा था कि शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, आपके पास बच्चा छोटा है
0: जी,
1: शहर बदला, आपका जॉब ऑफ नेचर बदला, आपकी अपनी व्यक्तिगत मातृत्व की भूमिका भी बदली, तो कैसे संभाल पाऊंगी। उसी दौरान क्या हुआ कि अप्रैल मई के बीच में एक डेपुटेशन की पोस्ट निकली भारत सरकार के प्रकाशन विभाग
0: जी,
1: की
0: जी।
1: उसमें उनको कुछ एडिटर्स चाहिए थे, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया और संजोग से मैं मैटरनिटी लीव पे गई। अभी मेरी पूरी छुट्टियां भी नहीं मैंने उनको बिताया था कि वो आ गया कि मुझे
0: सिलेक्शन हो गया
1: आना है, यहां पे आपका सिलेक्शन हो गया है
0: जी।
1: और सिर्फ लिखा था डीपीडी। अब मुझसे उस समझ में नहीं आया कि डीपीडी क्या होता है, पीआईबी को तो फिर भी जानते थे
0: जी, जी।
1: तो फिर यहां जी पता किया तो मालूम पड़ा डायरेक्टर ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन, ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसमें आज तक आजकल पत्रिका थी, बच्चों की पत्रिका भी छपती थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी छपता था और आईएएस ऑफिसर्स के लिए इंडिया छपता था। तो जी मैंने ज्वाइन कर लिया आकर के। अब मेरा जॉब ऑफ नेचर बदल गया। रेडियो में मुझे 6 दिन काम करना पड़ता था, यहाँ 5 दिन का उन दिनों लागू हो गया था
0: जी, जी।
1: और 10 से 5 काम करना है, तो मुझे लगा ये सुविधाजनक है और मैंने वो शुरू किया। अब रेडियो में रहते रहते आपको बोलने पर ज्यादा ध्यान देना होता है, उच्चारण सही हो, सही स्वर, दीर्घ स्वर लगे, किस तरीके से आपको एक्सेंट देना है
0: जी।
1: यहां बिल्कुल उसका उलट, आपको लिखना है, लिपि कैसी होनी चाहिए, छोटे ई की बड़े ई की मात्रा, हलंत कहाँ लगना है, चंद्र बिंदु कहाँ लगना है, मतलब जो भी आलेख है उसको संपादन करना है, उसको सुधारना है, उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। जॉब ऑफ नेचर बदल गया, पर मुझे नया काम लगा और अच्छा लगा, तो मैंने वो
0: एक्सेप्ट किया
1: और 3 साल जमकर किया। उसमें बहुत टाइम मिलता था मुझे, तो वहां की प्रकाशन विभाग की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, मैंने समझ लो आधी लाइब्रेरी तो पढ़ ली होगी,
0: यकीनन पढ़ ली होगी
1: क्योंकि बहुत फुर्सत रहती थी और बड़े बड़े राइटर्स की पुस्तकों का संपादन करने का अवसर मिला मुझे। मस्तराम कपूर की बाल कहानी, बहुत बड़े वो बाल कथाकार थे, विजयदान देथा, उनकी एक पुस्तक का मुझे संपादन करने का मिला। इस तरीके से बहुत सारे लोगों
0: के साथ
1: काम करने का मौका मिला और उसी दौरान यूपीएससी से आकाशवाणी के लिए वैकेंसी निकली थी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की, तो मैंने उसमें अप्लाई किया और मुझे कॉल आ गई क्योंकि दिल्ली में थी, तो मैं चली गई।
0: ये कौन सी ईयर की बात है?
1: ये 90 की बात है।
0: अच्छा जी,
1: 1990 की।
0: 1990
1: मेरा ऑफिस था पटियाला हाउस की बिल्डिंग है, उसमें प्रकाशन विभाग का
0: जी।
1: और इंडिया गेट को क्रॉस करिए और उधर आप पहुंच जाइए पंडारा, वो जो यूपीएससी का ऑफिस है वहां पर
0: जी।
1: तो पास ही था, तो मुझे और उसके आगे से ही मैं रोज जाया करती थी, लक्ष्मीबाई नगर में रहती थी तो उसके आगे से ही जाती थी, तो मैं उसको बड़े हसरत भरी नजरों से देखती थी। मुझे कॉल आई, फिर मैं गई, मेरा सिलेक्शन भी हो गया संजोग से
0: जी।
1: तो फिर मैं यूपीएससी से जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे दिल्ली में नहीं रखा गया, मुझे आप अपनी चॉइस बताइए नहीं तो हम पोस्टिंग कर देंगे, और उन्होंने देखा और मुझे आकाशवाणी बीकानेर में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में पोस्ट किया। अब वो तो मेरा अपना शहर, वहीं पली बड़ी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं वहां रही, 91 से 94 तक मैं बीकानेर में रही,
0: 2 साल का वो वक्त गुजारा।
1: हाँ, 2.5 साल का वक्त गुजारा
0: जी।
1: और उसके बाद मेरा दिल्ली आकाशवाणी में, आकाशवाणी दिल्ली में नहीं, मेरे को डीटीपीएस एक हमारी विंग है
0: जी, जी।
1: वहां मेरा ट्रांसफर हो गया, तो मैं अप्रैल 94 में यहां आ गई थी और 2-3 महीने बाद मैं आकाशवाणी दिल्ली आ गई थी अगस्त सितंबर में। तब से मैं दिल्ली स्टेशन पे रही और बहुत लंबे समय तक रही। बीच में 2006 से 2008 तक जरूर मैं आकाशवाणी रोहतक गई थी, उसके बाद रिटायरमेंट तक मैंने आकाशवाणी दिल्ली में अपनी सेवाएं दी हैं।

बहुत खूब। और आज ये खूबसूरत मौका है मैम कि आज आज हमारे साथ आप स्टूडियो में दोबारा से मौजूद हैं। चलिए एक बहुत प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, फिर हम और जानेंगे।

0: एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप, नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ हैं बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत सरला मैम। और अभी जब हम गाना सुन रहे थे तो मैम ने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए।
1: नसरीन
0: जी,
1: मेरा नाम ललिता है। कोई बात नहीं, हो सकता है मैं सरल स्वभाव की हूँ इसलिए तुम्हें सरला लगी।
0: मैम बहुत बहुत माजरत, आप यकीन माने आपकी बातों में मैं इतना खो गई कि मुझे नाम, आप बहुत इतनी प्यार से बात कर रही हैं, इतनी सरल है इसलिए मुझे वो दिमाग में सरला रह गया। बहुत बहुत माजरत। लेकिन मैम यकीन माने जो आपने अभी एक्सपीरियंस शेयर किए और जो इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई तो मैं चाहती हूं कि हमारे सुनने वाले भी सुने। यहां पर जो स्टूडियो में कोई ऐसी पर्सनैलिटी आई कि वो कभी आप भूल नहीं पाए, ऐसी कोई पर्सनैलिटी जिनका इंटरव्यू आपने किया हो? और
1: बहुत सारी
0: जी।
1: मैंने लंबे समय तक हिंदी वार्ता विभाग में अपनी सेवाएं दी
0: जी।
1: तो हिंदी के तमाम दिग्गज आते थे, राष्ट्रीय स्तर के कवि साहित्यकार, उनसे भी भेंट वार्ताएं की मैंने
0: जी।
1: नामवर सिंह जी थे, मैनेजर पांडे जी थे, संस्कृति कर्मी कपिला वात्सायन जी थी
0: जी।
1: उसके अलावा

0: ये कहा था, कब करूंगी ये
1: नहीं बताया जी।
0: तो उसके अगले दिन ही सुबह सुबह उन्होंने मुझे 10:30 बजे फोन कर दिया कि मैं लेकर 11 बजे देवानंद साहब को आ रही हूं
1: जी।
0: अब मैं तुरंत भागी अपने डायरेक्टर साहब के पास, लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी होते थे मेरे डायरेक्टर
1: जी,
0: कि वो आने वाले हैं, उनकी भी उपस्थिति चाहिए। तो मालूम पड़ा वो तो मंडी हाउस गए हुए हैं किसी
1: मीटिंग में,
0: कोई हाई लेवल मीटिंग हो रही है जी। फिर उनकी पीए को कहा कि भाई अर्जेंट मैसेज तो भिजवाइए किसी भी तरीके से। और हमने यहां थोड़ी सी तैयारी की, स्टूडियो कौन सा लेंगे, कैसे करेंगे, कुछ प्रश्न बनाए इंटरव्यू करने के लिए। वो बोले कि तुम लोग तैयारी करो और शुरू करो। और मेरे डिप्टी डायरेक्टर थे एक मिश्रा जी, देव कुमार मिश्रा, बोले हाँ हाँ हम तैयारी करते हैं। और हम लोगों ने इंटरव्यू किया और यकीन मानिए इतना बड़ा इंसान और इतना सरल इंसान,
1: इतने सहज
0: कि मैं उनको देखती ही रह गई। और वो इंटरव्यू जो था, मेरे साथ बैठे थे राजीव सक्सेना भी जो एफएम में
1: जी
0: अनाउंसर थे
1: जी।
0: तो उनको साथ में बैठाया गया और हमने बहुत बड़ा इंटरव्यू किया उनका। सारे पक्ष उनके पूछे थे, उनके चिर युवा होने का राज भी पूछा था कि क्या कारण है कि आप आज तक
1: इतनी फैन
0: दिलो दिमाग से जवान हैं। और वो आनंद लेने लगे। तो वो कार्यक्रम बाद में एफएम गोल्ड पर ही बजा, एफएम गोल्ड पर कई किश्तों में बजा, उसके बीच में गाना लगा करके, और बहुत लोकप्रिय हुआ। और उसको फिर कई बार बजाया गया। तो
1: कितने घंटे का वो कार्यक्रम था, कितना
0: मतलब रोज उसमें से 2 घंटे का कार्यक्रम तैयार करके वो लोग बीच में गाने भी लगाते थे
1: जी,
0: और वो बजा था।
1: तो काफी लंबी बातचीत रही होगी,
0: बातचीत लंबी
1: सारा
0: उनने अपने जीवन के बारे में सारे अनुभव बताए, फिल्मों के बारे में बताए, कुछ वो सामाजिक मुद्दों पे भी बोले, सिर्फ ये नहीं कि फिल्मी बातें हो रही हैं, सामाजिक मुद्दों पे भी बातें हुई
1: जी।
0: यूं समझ लो जैसे आज हम कहते हैं ना कि रेडियो भारतीय चेतना में बहता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वैसे ही उनकी चेतना में भी रेडियो था। और रेडियो के साथ वो ऐसे घुल मिल गए, नहीं तो फिल्मी हस्तियां रेडियो पर आने से थोड़ा गुरेज भी करती हैं और आ भी जाती हैं तो वो थोड़ा रेडियो को कमतर ही समझती हैं। पर उन्होंने इतना सम्मान दिया रेडियो को, इतने दिल से जैसे अपनाया हो, हमें भी बड़ा अच्छा लगा।
1: मैम यही अच्छे लोगों की पहचान होती है, जितने बड़े लोग होते हैं उतने ही हम्बल होते हैं। और हम ऐसे महान कलाकार जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, उनके बारे में तो हम जानते ही रहते हैं कि हाँ वो किस तरह की पर्सनालिटी है, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी।
2: नमस्कार, मीडियम वेब को 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलो हर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजंघा एवं न्यूज अन एयर मोबाइल एप मार्फत पनि हजुरले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। समय यसबेला अपरान्हको ठिक 3:57 भइसकेको छ। यहाँहरूलाई आज राति 10:30 सम्म प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरूबारे संक्षिप्त जानकारी गराउँदछौ। अहिले केही क्षणमा सुनाउनेछौ कार्यक्रम शौर्यगाथा। 4:30 को समय हो लेप्चा भाषाको कार्यक्रम तुङलुक तुङकुङ तुङलातको, जसमा आज सुन्नुहुनेछ तेन छिरिङ लेप्चाको स्वरमा केही गीत अनि एक वार्ता। विषय छ स्वास्थ्य जीवनको लागि जैविक खेती। 5 बजे श्रोताहरूलाई सुनाउनेछौ लिम्बू भाषाको कार्यक्रम नुसिचान, जस अन्तर्गत प्रथममा समाचार, त्यसपछि विभिन्न कलाकारको आवाजमा रहेको केही गीत अनि एक वार्ता। विषय छ सिक्किममा ग्रामीण पर्यटन। 5:30 प्रस्तुत गर्नेछौ सिक्किमे भोटिया भाषाको कार्यक्रम पानगन मेन्टो, जसमा यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ मेनलोम प्रार्थना अनि विभिन्न कलाकारको आवाजमा रहेको केही गीत। त्यसपछि विपद तयारी र सुरक्षाका उपायहरू विषयमा कार्यक्रम। 6 बजे यहाँहरूलाई हामी सुनाउनेछौ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट हिन्दी समाचार। 6:05 समय हो यस केन्द्रको दैनिक ग्रामीण कार्यक्रमको। 6:40, 45 अनि 50 मिनटमा सुनाउनेछौ यसै केन्द्रको प्रादेशिक समाचार, क्रमैले नेपाली, लेप्चा अनि सिक्किमे भोटिया भाषामा भने। 6:55 अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा हिन्दीमा एक वार्ता। विषय छ परिवार हो साथ तो चिन्ता कि क्या बात।

जय हिंद फौजी भाइयों, ये आकाशवाणी का गांतोक केंद्र है। फौजी दोस्तों का कार्यक्रम शौर्य गाथा में आप सभी श्रोताओं एवं फौजी भाइयों को हार्दिक स्वागत तथा प्यार भरा अभिवादन। जहां शब्दों में मिट्टी की खुशबू हो, जहां सुरों में दिल की धड़कन हो, स्वागत है आपका हिंदी कार्यक्रम शौर्य गाथा में। गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, कुछ गीत याद बन जाते हैं और कुछ यादें जिंदगी बन जाती हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रथम नगमा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं फिल्म दिल से गायक कलाकार ए आर रहमान की एकल आवाज में।

श्रोता, यदि आपका रेडियो सेट अन है तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गांतोक केंद्र से विभिन्न हिंदी फिल्म के गाने, कार्यक्रम शौर्य गाथा के साथ। जिस मिट्टी ने हमें पहचान दी, उस भारत मां को दिल से सलाम, क्योंकि हम सिर्फ लोग नहीं, हम इंडिया वाले हैं। भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन दिल में बसता तिरंगा एक ही है। सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है जब ओठों पर आता है हम इंडिया वाले। ये देश सिर्फ नक्शे का नाम ही नहीं, करोड़ों सपनों और भावनाओं की पहचान है, जहां विविधता में भी एकता मुस्कुराती है,

वही हम भारत वाले और हम इंडिया वाले। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का दूसरा नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से, गायक कलाकार के और साथियों की आवाज में।

श्रोता, कुछ मोहब्बतें वजह नहीं ढूंढती, बस दिल में उतर जाती हैं। बिल्कुल इस गीत की तरह जो हम बजाने जा रहे हैं, जब किसी याद दिल की आदत बन जाए तब उसे ही शायद फितूर कहते हैं। यह गीत सिर्फ प्यार की बात नहीं करता, ये उस एहसास को आवाज देता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल होता है। मोहब्बत अगर इबादत है तो उसका सबसे खूबसूरत नाम है तेरा फितूर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा हम सुनाने जा रहे हैं फिल्म जूनियर से गायक कलाकार अरिजीत सिंह के आवाज में।

श्रोता, विभिन्न हिन्दी फिल्म के गाने के साथ आप लोगों को मनोरंजन कराते हुए कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। गायक कलाकार अतीफ असलम की एकल आवाज में। श्रोता, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम कह नहीं पाते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कहे भी दिल में बस जाते हैं। मोहब्बत अक्सर चुप रहती है लेकिन उसकी धड़कनें बहुत कुछ कह जाती हैं। जब दिल किसी को हर पल महसूस करें और वो फिर अनजान रहे, शायद वही है तू जाने ना।

श्रोता सौर्यगाथा की यात्रा में कार्यक्रम का अंतिम प्रस्तुति हम सुनाने जा रहे हैं फिल्म जब वी मीट से गायक कलाकार मोहित चौहान की एकल आवाज में। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनके आने के बाद हर खुशी उन्हीं से जुड़ जाती है। जब किसी की मुस्कान में अपनी दुनिया दिखने लगे तब दिल बस यही कहता है तुमसे ही।

श्रोताओं, इसी गाने के साथ आज का कार्यक्रम स्वर्गाथा यहीं समाप्त होता है। कल फिर आप लोगों के साथ इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।

0: Tato san lungchega ga tole pangin min to denjo pelerim semona de ju he po in taring kilerim na chambo in di gyaple gyalsa dilli le hindi kele nechil sembona
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश

0: मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केन्द्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज तथा न्यूज अन एयर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ।

श्रोता यो सुन्नुहोस् लाइव फोन इन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सूचना। भोलि 15 तारीक मई 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 प्रसार गरिने ग्रामीण कार्यक्रममा हामी लिएर आउनेछौ लाइव फोन इन कार्यक्रम। विषय रहनेछ किडनी रोगका कारणहरू अनि यसबारे निवारण। यसैबारे जानकारी दिन पनि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ सोचेग्याङ एसटीएनएम अस्पतालका कन्सल्टेन्ट मेडिसिन एण्ड नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर

पुम चुकलत चुग्यम चुकलत सुर तारवत डोनर योंग न कर्थक ज्योति रादित्य सिंधिया सुरंग सुनिम सम सा गेन लिव अकोर का रेंजुंग थी सेट निमो अरे अकोर चेत का हरेन लेंगजुंग का जुर्थप का निम्बो अजुक अधिक नोट अकोर उन लोम अशोक पेडिक पोंसा अंगक मचेत निमो चंडिक थोबो थोपे नंगसिन का पुम कर्थक टो बजा तुरोक्ति का बागडोगरा नम्फा दिंगथो का लाख्योवंग सा अलोन नमची चकबिम रेंजुंग सा नमची सा तुन का चुनचित निमो लुकल रेन संदिया नन रेंजुंग सा ताकब बु चो दम्रो उन लेंजुंग सा नोट कोर लेंग पोंग नोंग का तिमी चो दम्रो सा अकुर लोम तदु सा थोपे लुंगजिंग सित निमो रेन हुनन यांगंग का ऑक्सीजन थो बो मनोम लो तक बो लोम पेडिक सा कोर मत उंसेट निमो असर थो पे पोंग सादेप का पुम कर्थक नन गोंग तो का फुंग थेप कत फ्रोन बो लेंग जुंग ऑक्सीजन असुंग थो पे का गुलन नुंग सा लियो का जु नुंग सेट निमो रेन जुंग सा गुलन कर्थक प्रेम सिंग तामंग नन तदो सा जुंग गेन लियो का तुंग बो सा फ्रोन ग्यो छक खबंग सम लोम न लुंगमान से तोम छत लियो थो बो निमो श्रेन छोंगजत कर्थक नरेंद्र मोदी नन माथोम बु रिंग फ्लोट सा सुर का थनचुम सा अग्यो का अदुत अचोत लुंगख्यो छत निमो मुन खुत तेत गोंग तो खबंग सम युग दिग बु सोंग सतन का वर्क फ्रॉम होम योंग न लिदोम ली लोम दो युग गुलोन का ली लोम दो युग मात से चंडिक दिख सेट उल्थो माथोबो निमो रेन तामंग नन नाम कत सतन का पोंग अकोर ममत से देव का कुंग से यक अन पंजिंग से यक क्रेम युक ममत से चक निम सा लियु का अशोक मत नोंग थोबो निमो अरे का जुंग तुंग वो पोंग मकन से सा अशोक ला निमो अरे सा देव का ली बोंग छे नन मलक दो तन युक चोर सेट निमो यकार मु दम सेम बोंग जुम नन दम क्योप देव तोम बु थोपे तन चेन नोंग दुंग अंगक योंग नो एस आई आर मिनोर पवार थप जोंग सकत अदुंग सलिउ का रेंजुंग दीप कति तोरक थप लेंगजुंग उन सम रोंग छोक लेंगजुंग पोंग का दोमसिम गेन सा तंचिन नोंगदुंग अंगक मचेत को बि थोबुनिमो अरे सा जुकाप लादेत बु दोमसिम नहन दोम क्यो बु सोंग थंग छोंग लुत उन तारवत देव तुंगले तुंग सोंग थंग छोंग माचोंग निमबुगम अरे का छुक वत बु दोम क्यो बु सोंग अचोप अचोक पोंग का तारवत मचेत पोंग निमो ग्याकार सा थिदोक द्रौपदी मुर्मू रेंजुंग सा सिक्निम न्यत सा अकोर का कोर सा तन का चुन सेत नुलत निमो रेन्यु हुन कम लबो सा छ न्यथिप तरोक का रेंजुंग ख्यो थी सिबु अडोन मा थोबो निमो थिदोक मुर्मू नन छ न्यथिप को क्यो टु ग्याकार ग्यामी ल्यांगसिर नथुला सुर का अकोर मा छेत उन अ अलोन रेंजुंग पुमजुंग थोसा कन्वोकेशन थोपे का जिउसेत नलत निमो रेंजुंग पुमजुंग थोसा थोपेल लेन सोक थिदोक नन तदो लेंगजुंग अकोर चत का जिउंग युग दिगबु सोंग काला अकालियोसेत अडोन मा थोबो निमो देपलेन थिदोक यम खिनोंगो देपलेन लेंगदे थिपन तारवत सा गेन थोलोम न चंडिक थोबु लो युग उन छु पेदिक लेंगक्यूंग सतन का तार थोबु ग्याकर guarantee for rochgar deptom bu ogjing chut srong pokyung sarur bar lidong ka palma thopis jukap panchat jung bongjum sa genpun song rem vbg ramji act sa chandik pong sa dep lungthyak syong un al thum pong no tong chen liu ka yu dik syong panchayat achok pong rem lom sur hnya chong nim bugum chwajum rem ring suk tong lung adc tarwat dep gat छु अरात नन उंग देप दिप्तोम बु उंग युक पोंग लोम उंग अग्यो ल्यांगक्यूंग मुलुब्लोंग तारवत छु लंतोंग सा देप का दिप्तोम बु मुलुब्लोंग उन सुमी अतियोन पोंग सा तन का लो जुक सिबु युक जोंग पेडिक सा पुम ल्यांग थो पोंग रेम लो न्यत लुंग यम को बिमोंग अरे का मनरेगा रेम अलोंग वीबी जी रामजी सा सदाम गंदिक थोबु निमोंग ग्याकार जुंग सा तारवत खाकत न्यथे फ्लीयोंग न उन्नति 2024 पेडिक सदाम सेसोंग बु सोंग उन कोमोर थोयोंग न ब्रेंग तार बु छोंग युक थालचत बोंग छि न सुरोंग गोंग तो का संवाद तो पेसा चंडिक मात्म तो पे का अउल अपार उन नोंग दुंग छोंग युक बोंग छि सकलोन पुन अन इंडिया भट्टाचार्य गुलोन नुंग सलिउ का निम्बुगम रेन भट्टाचार्य नन गुन सेसोंग बु सोंग रेम उन्नति पेडिक सा खुत्तत फंतो लियो सोंग योंग न अरे पेडिक उन अरे सा युक्चो देप देप तोम बु छु दोला समरोंग उन अवेत पोंग सा जर्थप जर्तोंग मत्स्योंग सम

0: कञ्जङ्गा 83 मेगाहर्ज तथा न्यूज अन एयर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, अब अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा हिन्दीमा एक वार्ता। विषय छ परिवार हो साथ तो चिन्ता की क्या बात। वार्ताकार हुनुहुन्छ डाक्टर प्रदीप त्रिपाठी।
1: सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परिवार के महत्व को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवार दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिन की शुरुआत इसीलिए की गई ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में परिवार के महत्व को समझ सके। किसी भी समाज का केंद्र परिवार ही होता है। परिवार समाज की नींव है और उसकी यह बुनियाद जीवन का आधार है। परिवार सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य है। उससे अलग होकर उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे जीवन में परिवार का सबसे पहला और सबसे स्थायी संबंध होता है। परिवार का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी एक मजबूती का प्रतीक है। अगर हम अपने परिवारों के भीतर अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो इससे समाज में शांति, समृद्धि और समझ बढ़ती है। इसके साथ ही यह बच्चों को सही मार्गदर्शन, संस्कार और जीवन के मूल्यों का एहसास कराता है, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आज के समय में परिवारों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन, करियर, सामाजिक दबाव, इन सब का असर परिवार के रिश्तों पर भी पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं और रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी कुछ प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष अलग अलग विषयों को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाता रहा है। वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है फैमिलीज इनक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, अर्थात परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण। इस थीम के अनुसार आज के समय में यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं परिवारों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब परिवार आर्थिक, शैक्षिक या सामाजिक रूप से कमजोर होते हैं तो इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके समग्र विकास पर पड़ता है। यह विषय हमें परिवारों की भूमिका को और अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाने का संदेश देता है। समाज और सरकार को भी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो असमानताओं को कम करें और हर परिवार को आगे बढ़ने का समान अवसर दें। तभी हम एक स्वस्थ, समान और खुशहाल समाज की कल्पना को साकार कर सकते हैं। पहली बार विश्व परिवार दिवस 1994 में मनाया गया था। हालांकि इस दिन की नींव 1989 में ही रख दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जीवन में परिवार के महत्व को बताने के उद्देश्य से 9 दिसंबर 1989 के 44-82 के प्रस्ताव में हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। बाद में साल 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने एक संकल्प में परिवार दिवस के लिए 15 मई की तारीख तय कर दी। इसके बाद हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाने लगा। विश्व परिवार दिवस को मनाने की शुरुआत करने के पीछे की वजह दुनिया भर के लोगों को परिवार से जोड़े रखना और परिवार से जुड़े मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैलाना था। हर साल इस दिवस के माध्यम से युवाओं को परिवार की अहमियत के बारे में बताया जाता है। परिवार अलग अलग विचार पसंद के लोगों को एकजुट करता है। लोगों के आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रेम से रहने के लिए प्रेरित करता है और भावनात्मक तौर पर परिवार एक दूसरे का सहारा देने व अकेलेपन को दूर करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त यह दिवस मूलतः परिवार से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। यह अवसर केवल एक औपचारिक दिवस नहीं बल्कि हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ परिवार के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और जिम्मेदारी को पुनः स्मरण का प्रतीक और दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा देता है। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य समाज में परिवार की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करना है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि वह पाठशाला है जहां व्यक्ति जीवन के मूल्य, प्रेम, त्याग, अनुशासन और सह अस्तित्व सीखता है। इस दिवस के माध्यम से यह

संदेश दिया जाता है कि बदलते समय और तेजी से भागती जीवन शैली के बीच भी परिवारों को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परिवार दिवस का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है समाज में बढ़ती असमानताओं और चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना। आज कई परिवार आर्थिक, सामाजिक और मानसिक दबावों से गुजर रहे हैं। ऐसे में यह दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम उन परिवारों के लिए संवेदनशील बने जो संघर्ष कर रहे हैं और उनके लिए सहायक वातावरण तैयार करें। विशेष रूप से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए परिवारों को मजबूत बनाना इस दिवस का मूल संदेश है। परिवार का महत्व हमारे जीवन में अतुलनीय है। यह वह स्थान है जहां व्यक्ति को न केवल सुरक्षा मिलती है बल्कि उसकी पहचान और आत्मविश्वास का निर्माण भी होता है। एक सशक्त परिवार ही एक सशक्त समाज की नींव रखता है। जब परिवारों में प्रेम, संवाद और आपसी समझ होती है तब समाज में शांति और सद्भाव अपने आप विकसित होता है। आज के युग में जहां तकनीक ने लोगों को जोड़ा भी है और कहीं कहीं दूर भी किया है, परिवार की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यस्त दिनचर्या, बदलती जीवन शैली और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच परिवार ही वह आधार है जो हमें संतुलन और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। यही कारण है कि इस दिवस का महत्व तो केवल एक दिन तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमें हर दिन अपने परिवार के प्रति सजग और समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। यह दिवस हमें यह भी बताता है कि परिवार केवल अधिकारों का नहीं बल्कि कर्तव्यों का भी केंद्र है। यह हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने परिवार के प्रति संवेदनशील रहे, बुजुर्गों का सम्मान करे, बच्चों को सही मार्गदर्शन दे और आपसी संबंधों में प्रेम और विश्वास बनाए रखे। दुनिया को बेहतर बनाने की शुरुआत सबसे पहले परिवार से ही होनी चाहिए। अगर हमारा परिवार मजबूत होगा तो हमारी संस्थाएं और समुदाय भी मजबूत होंगे। बदलते समय और आवश्यकता के कारण आज परिवार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। इस प्रक्रिया में लोग न सिर्फ अपनी जड़ों से कट रहे हैं बल्कि परिवार जैसी संस्थाएं खत्म हो रही हैं या फिर टूट रही हैं। आज हमें परिवार जैसी संस्था को बचाए रखने हेतु चिंता से कहीं अधिक चिंतन करने की जरूरत है। हिंदी के वरिष्ठ कवि राजेश जोशी की कविता संयुक्त परिवार परिवार की मूल संवेदना को बहुत ही बारीकी के साथ उद्घाटित करती है। यह कविता वर्तमान समय एवं परिवार व्यवस्था के टूटन का जीवंत उदाहरण है। अपनी कविता में वे लिखते हैं, मेरे घर आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है। घर के ताले में उसकी पर्ची खुशी है। आया होगा न जाने किस काम से वह, न जाने कितनी बातें रही होगी मुझसे कहने को। चली गई हैं सारी बातें भी लौट कर उसी के साथ। रास्ते में हो सकता है कहीं उसने पानी तक न पिया हो। सोचा होगा शायद उसने यही मेरे साथ पिएगा चाय। कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन से उस पैतृक घर से जहां बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे। लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे सारे भाई बहन। कोई न कोई हर वक्त बना रहता था घर में। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था हर आने वाले को। पूछ लिया जाता था गुड़ और पानी को। खबर मिल जाती थी बाहर गए आदमी की। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ बहुत कुछ। अब इस घर में रहते हैं इन मीन तीन जन। निकलना हो तो कहीं सब निकलते हैं एक साथ घर सूना छोड़कर। एक छोटा सा एकल परिवार कोई एक बार चला जाए तो दूसरों को काटने को दौड़ता है घर। नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है चोरों को। कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान। सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग। तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश। बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को भी चार मोहल्ले के लोग जानते थे। मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से। अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग एक साथ। टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता। कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है। ध्यान देने योग्य है कि राजेश जोशी की यह कविता टूटते परिवार एवं मानवीय मूल्यों के विघटन को बहुत ही बारीकी के साथ उद्घाटित करती है। आज हमें टूटते बिखरते मूल्यों को फिर से सहेजने की जरूरत है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस परिवार के मुद्दों पर आम जनमानस एवं बौद्धिक समाज को सचेत करने तथा वैश्विक स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की सही मायने में सार्थकता तभी होगी जब हम पारिवारिक

0: एकता एवं उसके मूल्यों को उसकी सार्वभौमिकता के साथ समझेंगे, उसे मन वचन और कर्म के साथ आत्मसात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की पूर्व संध्या हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, परिवार का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। आइए हम सभी इस अवसर पर यह संकल्प लें कि अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे, रिश्तों को मजबूत बनाएंगे और एक खुशहाल सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: श्रोताहरूले भर्खरै सुनिरहनु भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा हिन्दीमा एक वार्ता। विषय थियो परिवार हो साथ तो चिन्ता की क्या बात। वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रदीप त्रिपाठी। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज तथा न्यूज अन एयर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। हजुरहरूकै पत्रमा आधारित रहने रमाइलो सांगीतिक कार्यक्रम नेपाली अनुरोध संगीत। नेपाली अनुरोध संगीत कार्यक्रमलाई कुरेर बस्नुहुने हाम्रा तमाम संगीत प्रेमी श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन जनाउँदै कार्यक्रमको प्रथम प्रस्तुति हामी सुनाउन गइरहेछौ गायक कलाकार रुस्तम लेप्चाको एकल आवाजमा। यस गीतको निम्ति हामीलाई पत्र पठाउने श्रोता हुनुहुन्छ सिलीगुड़ी पश्चिम बंगालबाट सुचित्रा शर्मा, माझीटार पूर्व सिक्किमबाट युगल सुब्बा, अञ्जली छेत्री देथाङ दक्षिण सिक्किमबाट भावना शर्मा, पचेखानी पूर्व सिक्किमबाट अरूण प्याकुरेल, टीका शर्मा एवं तारा दुलालले पनि यो गीत सुन्न चाहनु भएको छ। त श्रोता स्वीकार्नुहोस् नेपाली अनुरोध संगीत कार्यक्रमको यो प्रथम प्रस्तुति।

0: श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको थियो पंकज उदासको आवाजमा रहेको केही गीत गजल। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता अब सुनाउनेछौ चलचित्र निर्माता त्रिवेदी राईसँग लिएको एक अन्तर्वार्ता।
1: आकाशवाणी गैंगटॉक में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आज रात हमारे साथ ऐसे एक शख्स है, ऐसे एक प्रतिभा है जो ना बल्कि एक असाधारण टैलेंटेड वुमन है जिसका डेब्यू वेंचर सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जीत चुके हैं। सिक्किम से लेते हुए सारा विश्व में उनका फिल्म का जय जयकार हो रहा है और आगे भी होगा, ऐसा भी हमारा उम्मीद है और विश्वास है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई फील ऑनर्ड एंड प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू एन वेरी टैलेंटेड फिल्म मेकर, मिस त्रिवेणी राय। मिस राय, वेलकम टू द स्टूडियो।
2: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
1: मैडम, मैं पहले ही आपसे जानना चाहूंगा कि आपका चाइल्डहुड जैसे सिक्किम में बीता, वो कैसे आपको फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया?
2: हमारे कल्चर में और सोसाइटी में ओरल स्टोरी टेलिंग का बहुत गहरा हिस्ट्री रहा है। जैसे कि हम चार बहनें हैं, हमारी मम्मी सोने

0: इससे पहले हमेशा रात में कहानी सुनाया करती थी और हमारा नेपाली लिटरेचर भी बहुत ही वेरी रिच, जैसे कि राइटर्स श्री सानु लामा जी, इंद्रबहादुर राय जी, उनकी कहानियां पढ़ती आई हूं मैं स्कूल से ही। और मुझे हमेशा ये विजुअलाइज करने का एक जुनून भी था कि क्लास में जैसे हमें ज्योति बिना को उज्यालो बोल के एक शॉर्ट स्टोरी था, जब उन्होंने टीचर मुझे पढ़ा रही थी तो मैं स्लोली स्लोली वो चीजें विजुअलाइज करती थी। और मुझे लगता है इन इनहेरेंटली हमें ये कैपेसिटी है, बट ऑब्वियसली मेरी मम्मी भी कहानियां लिखती है, कविताएं लिखती है, तो उनसे भी प्रेरणा मिली है। तो ये क्रिएटिव लाइन में मेरा चाइल्डहुड का ये हाथ रहा है।
1: मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, शी इज रेफरिंग टू श्रीमती गीता राय
0: जी जी,
1: हु इज आर मॉम एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं कि चाइल्डहुड से ही मैडम का ऐसा स्वभाव था कहानियों से खेलने का, कहानियों सुनने का, और आगे जाकर उनको ऐसा लगा कि वो पेशेवर तरीके से कहानीकार बन सकता है। तो मैडम हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको एग्जैक्टली किस पॉइंट ऑफ टाइम में लगा कि आप एक पेशेवर फिल्म मेकर बनना चाहते
0: हैं। मुझे लगता है बहुत सारे आर्टिस्ट के लाइफ में ऐसा एक डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होता है। जैसे मैंने जापानीज नॉवलिस्ट मुराकामी का, उनको जब बेसबॉल का गेम देख रहे थे एग्जैक्टली उनको पता लगा तब मैं राइटर बन सकता हूं। मुझे लगता है मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जहां मुझे लगा, पहले मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट रही हूं तो मुझे लगा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। तो मैंने यहां का हमारा लोकल डेली इंग्लिश डेली सिक्किम एक्सप्रेस में मैंने 2 महीने इंटर्नशिप किया, फिर मुझे लगा मैं फीचर राइटर बनूंगी। लेकिन मुझे हमेशा पता था कि मुझे लिखने में इंटरेस्ट है। और उसके बाद मैं कॉलेज में जब गई तो मेरे टीचर्स ने बोला कि आप बहुत क्रिएटिवली अच्छे बच्चे हो तो शायद आप फिल्म स्कूल जा सकते हो। तो जब तक मैं फिल्म स्कूल नहीं पहुंची, तब तक सिलेक्ट नहीं हुई थी, तब तक मुझे पता नहीं था कि सिनेमा ही परस्यू करूंगी या नहीं। लेकिन मुझे पता था ये एकदम बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। और मुझे बचपन से ये था कि मुझे एक पावरफुल इंसान बनना है, नॉट इन द सेंस ऑफ यू नो पावर पावर, लोगों तक पहुंचना। और यू नो पॉलिटिशियंस जो चेंज पॉलिसीज के द्वारा लाते, मुझे लगा और कौन ऐसा इंसान है या प्रोफेशन है जो ऐसा पावरफुल है। तो मुझे लगा स्टोरी टेलर है, बट फिल्म मेकर मोर सो, क्योंकि आप विजुअली भी लोगों को फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं।
1: जी, इसी संदर्भ में मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा, श्रोताओं से भी, कि प्रोलिफिक फिल्म मेकर फ्रॉम वेस्ट बंगाल ऋतिक घटक वंस टोल्ड कि सिनेमा इज द बेस्ट मीडियम टू यू नो मूव पीपल। आपके लिए भी ऐसा ही है क्या?
0: जी जी जी, मुझे लगता है कि ओरेटर पे डिपेंड करता है कि वो कितने भावुक होकर लोगों को कहानियां सुना सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये विजुअल मीडियम जो है सबको ये पावर दे देती है। मतलब आपका क्राफ्ट अच्छा होने से आप किसी को भी मूव कर सकते हो कहानियों से।
1: हम लोगों को पता है कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, ये आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है।
0: जी जी,
1: तो उस दिनों में कैसे आप सोचते थे, कैसा सपना आप देखते थे, थोड़ा इस बारे में हम श्रोताओं को जागरूक कीजिए।
0: तो मैं जब थर्ड ईयर जर्नलिज्म परस्यू कर रही थी सेंट जोसेफ दार्जिलिंग में, तब मुझे फिल्म स्कूल के बारे में पता चला। मुझे था कि अब मैं मेरा डिग्री खत्म करूंगी और फिर मैं किसी न्यूज़पेपर में काम करूंगी, फीचर स्टोरीज लिखूंगी, सॉफ्ट स्टोरीज करूंगी। फिर मुझे मेरे प्रोफेसर विक्रम राय जी, उन्होंने बताया कि फिल्म स्कूल जैसी जगह होती है जहां पे आपको पढ़ाई नहीं करनी होती, खाली फिल्म देखना होता है। मुझे लगा वाह, ये कैसे जगह है। हाँ, और फिर उन्होंने बोला कि ये सब्सिडाइज रेट में है, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखनी है तो 20 से 30 लाख देना पड़ता है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है INB मिनिस्ट्री सब्सिडाइज रेट में बच्चों को फिल्म पढ़ने का सीखने का मौका देती है। और मुझे लगता है हमारे रीजन से, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहां से फिल्म स्कूल में जितने भी बच्चे गए हैं, इन्होंने हम लोगों का एक कम्युनिटी है जो एकदम सीरियसली परस्यू कर रही है सिनेमा, क्योंकि हमारा एक्सेस नहीं है बॉलीवुड में इंडस्ट्री में। तो फिल्म स्कूल ही हमें सिनेमा के बारे में सिखाती है, क्राफ्ट सिखाती है। तो मैं जब सिक्किम में अर्थक्वेक आया था, तब मैं 2011 में मैं तब प्रिपेयर कर रही थी। मैंने 2 ही फिल्म देखे थे वर्ल्ड सिनेमा से, कुरोसावा का रोशोमन और एमर कुस्तरिका का, और एक फिल्म था। तो दोनों फिल्म देखी, जीके की किताबें पढ़ी बहुत ज्यादा, और जब फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, उसके बाद मैं 6 महीने मैंने बिलीव नहीं कर पाई इंस्टीट्यूट में कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। बट आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज एवर हैपन टू मी इन माई लाइफ फिल्म स्कूल।
1: आई वुड लाइक टू नो कि देयर इज अ डिबेट मैम कि सिंस द यू नो इंसेप्शन ऑफ OTT, लोग पहले फिल्म देखने के लिए एकदम, अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री ऑफ फिल्म की तरह चला जाऊं, कि लोग यूज टू गैदर इन ए प्लेस, लोग यूज टू सी इन अ स्क्रीन, वो एक कम्युनिटी का मतलब फीलिंग बिल्ड होता था। बाद में सिनेमा हॉल आया, अब तो मल्टीप्लेक्स आ गया है काफी जगहों में, इवन गैंगटॉक हैज इट्स ओन मल्टीप्लेक्स। अभी ओटीटी का जमाना है, ओटीटी में यू आर द किंग और

0: क्वीन, यू कैन स्विच द कंटेंट। आपको क्या लगता है कि ओटीटी का इंसेप्शन, एक तो पॉजिटिव सबको पता है कि लोग कहीं से भी सिनेमा देख सकते हैं, आपका फिल्म भी कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है, पर वो जो एक साथ फिल्म देखने का, एक साथ एक हॉल में जाकर एक साथ एकत्रित होकर एक फिल्म को एंजॉय करने का जुनून था, वो जो कोशिश था आदमी का, एक जर्नी था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे चला
1: जी,
0: आया
1: जी, जी।
0: तो डू यू थिंक एज अ फिल्म मेकर डज दिस इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द फिल्म और द यू नो इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस?
1: मुझे लगता है क्वालिटी भी हो ये इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि हम लोग जब फिल्म बनाते हैं, जो पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, हम लोग चाहते हैं कि लोग बड़े हॉल में देखें, उसी तरह से साउंड डिजाइनिंग होता है।
0: जी,
1: तो हम सब मेकर्स चाहेंगे उनकी फिल्म थिएटर में बड़े पर्दे पे लोग देखें, पर हमें ये भी पता है कि इंडिया में जितनी फिल्में बनती है साल में, पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक किसी का फिल्म बड़े पर्दे में जाए। तो बट इट इज लाइक आई थिंक इट इज बून एंड अ बेन लाइक यू सेड, क्योंकि पहले ऐसा था कि जब तक मैं फिल्म स्कूल नहीं गई, वर्ल्ड सिनेमा क्या है बच्चों को पता ही नहीं होता था सिक्किम में। लेकिन अब नॉट नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स टू देन गो टू फिल्म स्कूल, वो घर बैठे बैठे ही जापान से फिल्म देख सकते हैं, फ्रांस से, जर्मनी से, तो वो भी है। ये ऑफकोर्स क्वालिटी इम्पैक्ट करती है, डिपेंड करता है अगेन, यू नो इट इज लाइक सेइंग फैक्ट्री का प्रोडक्ट चाहिए आपको या हैंडमेड प्रोडक्ट चाहिए, वैसी चीजें। क्योंकि आई थिंक ओटीटी में जिस तरीके से, जिस गति से आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, आई थिंक उतना इन्वॉल्व नहीं रह सकते फिल्म मेकर्स जितना दूसरे प्रोजेक्ट में, फीचर फिल्म में, मतलब जो ओटीटी पे नहीं आता है वैसे होता है। लेकिन बट आई थिंक हमारे लिए तो अच्छा ही है एज अ मेकर, मुझे लगता है, क्योंकि रीजनल सिनेमा स्पेशली जैसे नेपाली लैंग्वेज एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में माइनॉरिटी लैंग्वेज है, तो उसका एक्सेस मैं हर जगह तो स्क्रीन नहीं कर सकती हूँ। अभी मेरी हमारी फिल्म 29 मई को रिलीज हो रही है, बट मैं हर एक सिटी में नहीं कर सकती हूँ, गिनी चुनी मेट्रो सिटीज में कर सकती हूँ। तो फिर मेरा दूसरा क्या है कि कैसे मैं अपनी अपना स्टोरी लोगों तक पहुंचाऊं, अपने कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाऊं, तो वो ओटीटी ही रहेगा।
0: तो आपका ये कहना है मैडम ओटीटी आने का मतलब पॉजिटिविटी ज्यादा है, देयर आर सम नेगेटिविटी बट दैट कैन बी यू नो कॉम्प्रोमाइज।
1: या बट अब अभी मतलब ऑडियंस ये हम कौन होते हैं बोलने वाले, क्योंकि
0: ऑडियंस
1: इज द किंग।
0: लाइक जब फिल्म की बात हो ही रही है, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग सिनेरियो स्पेशली इन
1: सिक्किम में हो या कहीं भी हो, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जब इंडिपेंडेंट बोलते हैं लोग बोलते हैं कि ये वर्ड क्यों यूज करते हो आप, क्योंकि हमें कोई स्टूडियो बैक नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं ही अपनी असिस्टेंट हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो इंडिपेंडेंट इन द सेंस आप ट्रूली इंडिपेंडेंट हो कि आप क्रिएटिवली अपना डिसीजन ले सकते हो, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, यू आर ट्रूली लिमिटेड, यू नो। तो सिनेरियो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, और कुछ दोस्तों ने जब हमारी ये रिलीज की न्यूज आई और ये पता चला उनको कि बॉलीवुड से बहुत सारे बड़े फीमेल फिल्म मेकर्स बैक कर रहे हैं, और कांस विनर पायल कपाड़िया हमारी फिल्म बैक कर रही है, दे रोड टू मी सेइंग यू आर लिविंग अवर ड्रीम। मतलब ऐसा है कि ये नेपाली में बनी है और ये रिलीज हो रही है, ये तो बड़ी बात है, लेकिन हिंदी में भी जो इंडिपेंडेंट फिल्म बन रही है उनको भी अभी स्क्रीन तक आना, पर्दे में आने का मौका मिलना बहुत स्ट्रगल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि आई थिंक अगेन ऑडियंस किस हिसाब से किस फिल्म को देखना चाहती है वो सब डिपेंड करता है, बट स्ट्रगल तो है पर करना ही है।
0: इन दिस कंटिन्यूएशन मैडम आई वुड लाइक टू नो डू यू हैव एनी यू नो मैसेज और अपील टू गिव गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, कि जैसे देखिए आपका फिल्म बन गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, एंड इट इज यू नो बींग बैक्ड अप बाई सेवरल स्टार्स ऑफ बॉलीवुड एंड इट विल गो वर्ल्ड वाइड, इट हैज गन वर्ल्ड वाइड, इट इज वेरी क्लियर नाउ। मे बी फॉर द अपकमिंग जनरेशन गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का लोगों से या सीनियर अधिकारियों से आपका कोई संदेश की इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग को थोड़ा बूस्ट कर पाए?
1: देखिए सिक्किम में तो ऐसा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो भी बाय डिफॉल्ट बनता है इंडिपेंडेंट ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए यशराज हो या कोई हॉलीवुड का स्टूडियो नहीं है, तो जो भी फिल्में बनती है इंडिपेंडेंट होती है। और सिक्किम सरकार एक्चुअली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स बहुत सारे स्टेप्स उठाए उन्होंने, जैसे कि आज कलाकार सम्मेलन हो रहा है जहां पे हम फिल्म मेकर्स का वर्कशॉप चल रहा है, इसी साल से सिक्किम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ जहां पे वर्कशॉप था, मार्केट था। बट मैं डेफिनेटली पॉलिसी वाइज में सब मतलब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, और मैंने डायरेक्टली भी रिक्वेस्ट किया है कि जो सब्सिडी मिलती है फिल्म मेकर्स को यहां से, वो अगर गवर्नमेंट फिल्म शूट होने से पहले थोड़ा परसेंटेज पहले ही मेकर्स को दे, जी, तो इट विल बी इजियर फॉर पीपल, क्योंकि सब लोग, जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने अपनी सेविंग्स, और मेरी मम्मी गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी तो उनके रिटायरमेंट के पैसे से हमने फिल्म बनाई, लेकिन सब लोग उस प्रिविलेज से या उस जगह से नहीं आते और सपना

0: देखना सबका हक है। सिक्किम ऐसी जगह है पॉसिबल, उसका मतलब सिक्किम ऐसा बन सकता है कि है भी, कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन चीफ मिनिस्टर उनको पायलट बना देते हैं, ट्रेनिंग भेज देते हैं। तो मुझे लगता है फिल्म मेकिंग में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि कोई भी बच्चा बोले मुझे फिल्म मेकर बनना है, तो हमें वो रिसोर्सेस और ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि हम उनको एनेबल कर सके, कि मतलब एक बच्चे को बनाने से कुछ नहीं होगा, कि इकोसिस्टम बने कि हर कोई बच्चा जो चाहे वो बन पाए।
1: शेप ऑफ मोमो का ट्रेलर में जो हम लोग देख सकते हैं कि ए गर्ल गोज टू यू नो परस्यू हिज करियर इन अनदर सिटी एंड शी लीव्स अ जॉब एंड कम्स बैक, डज दिस हैव एनी यू नो लिटरल सिग्निफिकेंस विद योर लाइफ?
0: जी जी, ये तो बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है डेब्यू फिल्म मेकर्स का फर्स्ट फिल्म हमेशा अपने एक्सपीरियंस से आता है। दैट्स वाई आई थिंक बहुत स्पेशल भी होता है फर्स्ट फिल्म, भले ही मैं अब और 10 फिल्में बनाऊं, लेकिन शेप ऑफ मोमो विल ऑलवेज बी स्पेशल, क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है, अपनी एक्सपीरियंस से आती है। तो मैं जब कोलकाता से वापस आई, क्योंकि कोलकाता में मेरे बहुत सारे दोस्त फिल्म स्कूल पढ़ने के बाद बॉलीवुड में जाना चाहते थे, और मुझे लगा हमारी इंडस्ट्री भी बहुत नेसेंट स्टेज में थे, तब हमारे जो सीनियर फिल्म मेकर है प्रशांत रसेली, खाली वो ही एक्टिवली फिल्म बना रहे थे, तो मुझे लगा हमें भी आगे कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब सेंटर ने हमें सब्सिडी में पढ़ाया है, हमें भी कुछ सोसाइटी को वापस देना है। तो मैं जब वापस आई और मैं कुछ और लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ और एक्सपीरियंस किया, तो वही एक्सपीरियंसेस कुछ मेरे और कुछ दूसरों के मिला के ये फिल्म बनाई है।
1: ये शेप ऑफ मोमो एग्जैक्टली ये फिल्म का नाम रखना है ये, और ये फिल्म का जो स्टोरी है, हाउ डिड यू कंसीव इट?
0: जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी एक्सपीरियंस से कुछ चीजें बनाई है, तो उसमें एक चीज ये है कि आई लिव इन अ हाउस फुल ऑफ वेमेन, हम चार बहने हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा गुजर गए और मेरी एक नीस हमारे साथ रहती है। तो जब भी मैंने ये देखा है कैसे सोसाइटी में जब एक मेल नहीं होता है वो घर कैसे फंक्शन करता है, वो चीज ने मुझे बहुत मैंने क्यूरियसली अपने ही एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व किया, और मुझे लगा ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म बन सकती है जो एक डिस्कोर्स स्टार्ट कर सकती है, जिसमें लोग रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने लाइफ के बारे में, दूसरों के लाइफ के बारे में। और शेप ऑफ मोमो, जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को अभी भी बता रही थी कि मोमो इतना इंटीग्रल पार्ट है हमारे सोसाइटी का, जैसे आपको पता ही होगा हर फेस्टिवल में, हर ओकेजन में मोमो होता है, फ्यूनरल से लेकर वेडिंग तक। तो उसको हमने जब मतलब हमारी नेपाली कम्युनिटी से फिल्म आ रही है या सिक्किम से फिल्म आ रही है, तो मोमो तो होना ही है उसमें,
1: सिनोनिमस है कल्चर के साथ।
0: जी जी जी, तो उसको हमने कुछ और तरीके से दर्शाने की कोशिश की है, वहां से एक डिस्कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश की है। लोग बहुत बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से रखना है, तो जैसे कि कहीं जगहों में भारत में बोला जाता है जब तक लड़की राउंड रोटी नहीं बनाती वो लड़की नहीं है, मतलब परफेक्टली लड़की नहीं है, तो वैसे ही हमारे प्रोटैगनिस्ट को भी परफेक्टली मोमो बनाना नहीं आता है। तो इसी चीजों में लोग इंटरप्रेट करते हैं। अगर जब आप देखेंगे आपको कोई और इंटरप्रिटेशन मिलेगा, और हमें लगेगा कि वो सक्सेसफुल फिल्म सक्सेसफुल तब होती है जब व्हेन यू पुट फॉरवर्ड अ पीस ऑफ आर्ट एंड पीपल आर एबल टू इंटरप्रेट इट इन मेनी मेनी वेज। तो इंटरप्रेट करने के लिए हमने खुला छोड़ा है।
1: अच्छा, तो जैसे आप ये फिल्म बनाए थे, डिड यू एवर इमेजिन कि यू विल यू नो गेट सो मच इंटरनेशनल रिकॉग्निशन?
0: एक तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि हम अच्छा फिल्म बना रहे, क्योंकि मेरे सारे क्रू मेंबर्स SRFTI और FTII से, तो हमारी फिल्म स्कूल की ट्रेनिंग, ऑब्वियसली एस्थेटिकली हम लोग सेम लेवल में सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी सिनेमा देख के हम लोग 4-5 साल पढ़े होते हैं कि हमें एस्थेटिकली पता होता है कि हमें हमारा टेस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। हमें पता था हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन फिर से फिल्म स्कूल की ट्रेनिंग ये भी है कि तुम फिल्म बनाओ ये मत सोचो कि क्या होगा, यू नो, क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे प्रेशर नहीं होता है कि यू नो ये फेस्टिवल में भेजो ये भेजो, वहां पे आपको खुद की टैलेंट, खुद का क्राफ्ट डिस्कवर करने का मौका दिया जाता है। और वही मौके का फायदा उठाते हुए हमने एक टीम बनाया जिसने सोचा कि चलो कुछ अच्छा बनाते हैं। और जब आप कुछ चीज ऑनेस्टली करते हो, दिल से करते हो,
1: कायनात आ जाते हैं।
0: जी जी जी,
1: सफलता से मिलाने। तो जैसे आप एक दौरा गुजरा, यू हैव यू नो वन सो मच इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, नाउ द फिल्म इज ऑल सेट टू रिलीज इन गैंगटॉक ऑन 29 मई,
0: इट इज इन इंडिया एंड इन नेपाल
1: दो। सो what's the difference of feelings? Like it's about homecoming, that's about winning international recognitions, and this is about homecoming, this is about you know showing your child and introducing your child to your state.
0: Yes, yes.
1: So how do you feel on this?
0: Yes, I'm very excited, nervous bhi hoon, nervous abhi kam hoon, kyunki bahut sare Sikkim ke logon ne already bahar film mein ye film dekhi aur unhone feedback diya hai, but I'm nervous and I'm happy.

0: कि मुझे ये मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को ये मौका नहीं मिलता है कि अपनी फिल्म जो है बड़े पर्दे पे अपने लोगों को दिखा पाए। तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा है कि बाहर से मोमो खाने का मजा और घर का मोमो फाइनली टेस्ट करने को मिलेगा मुझे, तो
1: एंड एनी मैसेज और संदेश टू द अपकमिंग फिल्म मेकर्स, बिकॉज आई नो द इंटरव्यू व्हेन इट्स बीइंग ब्रॉडकास्टेड, काफी सारे फिल्म का जो उत्साही लोग हैं और काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी वेरी एक्साइटेड टू लिसन दिस इंटरव्यू। एनी मैसेज फॉर देम
0: इन सिक्किम
1: और एज ए,
0: तो आई थिंक सब लोग बहुत ग्लैमराइज करते हैं इस चीज को, जैसे कि सबको लग रहा है कि मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूं, लेकिन इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। तो आप अगर आप में परसिवियरेंस है, पेशेंट है, और आप किसी चीज को या फिल्म मेकिंग को एकदम मन से करना चाहते हैं, तभी आइएगा, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि अदरवाइज इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। देर आर डेज, मुझे मैं जितनी शिद्दत से भी इस फिल्म को प्यार करती हूँ, देर आर डेज वेन आई क्वेश्चन माई सेल्फ। तो मुझे यही है कि आप अगर आएंगे तो मेहनत कीजिए, पैशनेटली फॉलो कीजिए। और आपके दर्शकों को इस मीडियम के थ्रू मैं बोलना चाहूंगी, 29 मई को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है थिएटर्स में इन इंडिया एंड इन नेपाल। हमने बहुत प्यार से और बहुत ऑनेस्टी से बनाया है, आप लोग प्यार दीजिएगा।
1: सो दोस्तों, टुनाइट वी हैड मिस त्रिवेणी गीता राय, हुज डेब्यू फीचर फिल्म Shape of Momo is going to hit theater in India and Nepal on 29 May. I, on behalf of Akashvani News Gangtok, I really congratulate her and wish her success. And आपसे भी सबसे request रहेगा, आप कृपया हॉल में आए, इस फिल्म को देखे, महसूस कीजिए और बताइए कि कैसे ये फिल्म सिक्किम को एज ए स्टेट और जैसे आंतर्जातिक क्षेत्रों में भी कैसे इसको प्रेजेंट करता है। आप सभी को शुभकामनाएं। और ये भी मैडम से मैं इजाजत लेते हुए जाते जाते बताना चाहूंगा कि फिल्म मेकिंग,
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरूषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों

0: पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 एआईएडीएमके विधायकों ने ओएस मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।

0: सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों

0: ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के ये भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central.

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ हैं डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा। और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक एआई बेस्ड एक मॉडल है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं, इसमें जो आईएमडी का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको आईएफएस कहते हैं, आईआईटीएम का ईआरएफ कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस चार दिन है, उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ फाइव डे वेट स्पेल, और सेकंड ये है कि फाइव डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरे 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है। और एआई बेस्ड ये मॉडल हमने डेवलप किया है, अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया।

0: इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और एक यूटी में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी डीजी मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण कहता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं। इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा। हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितने भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो 4-in-1 प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर पर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी। अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3,196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसिमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा और इनके क्रॉप में तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहां पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCM और WF का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया। ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स

0: जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए, ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है, अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। ये एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहां पे AWS डेटा, ERG डेटा, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए, उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शीश, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यूपी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं, मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है। हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहां के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहां पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फिर वो उनका गांव का जो लोग है, जो किसान, उनको फर्दर डिसमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन की, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशुसखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहां पर कृषि सखी फसल सखी फिर उसका गांव में जो डिसमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इनकेस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहां पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका KT है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो less than 2 hectare है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शीश, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट

0: टेक्निकल से कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी है जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, जिनके कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन जाता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखनी चाहिए, वो रीजनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका एडब्ल्यूएस देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो एडब्ल्यूएस कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.